इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं निगेटिव एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकितिन फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म में है राही बदल गई है, इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

देश के सच्चे दुश्मन है ये जो मिलावट करते हैं। इनकी बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइक मुकेश मिलके ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियन त्रियन तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियन त्रियन तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियन त्रियन तक में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है, देखते हैं, हाँ, मैथिली मुकेश, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर। Thank you.

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाई है मेरे प्यार में क्या वफा न थी। यहाँ क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो जवान हम,

शंकर जय किशन के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं और ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

कि हम आधा आधा लता जी और अपन की किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश किया बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म। इस तरह से

फिर हम हंस दिल जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है इस तरह से, ये दुएत है उन्हीं कौमी के साँच पर।

रफ़ी साहब आशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया ने कितनी सहसस्त खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है।

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आजा रे आजा सनम। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं, तो चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, धमाकेदार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी, मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

के आवास में साथ दे रहे थे हमारा मोहम्मद रफी जी। फिल्म का नाम आप ज़रूर जानना चाहोगे तो मैं यहाँ से ज़रूर से बताऊँगी, उसमें वादा नहीं है। फिल्म का नाम सहरा और फिल्म पिक्चराइज किया गया है नेकंत इंद्रियन से अस्तक में मेरे दोस्त।

क्लासिक रोमांटिक गीत लता जी की आवाज में है ना, ये आपके वास्ते यहाँ से पेश किया जाता है, यहाँ से यानी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से अपने रंग हजार फिल्म का नाम।

क्या बयान है। रफी जी ने हमको बता दे कि मैं तो अपने ही धुन में मगन में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। वेल, एक बेन हॉर्स्ट कब लाई दत इधर पेन।

0: Geef het een nieuw leven op Vinted. Zo.
1: Personeel alleen ja ze zeggen ki hamne kishor da ke gaye hue geet film ka naam Nautanki Boy aur aap se bata de kishor da ji khud is film mein ye geet ko act ki hai aap us mein dekhenge किशोर दाजी क्यों अगर चाहे तो देखना फिल्म का नाम नौटंकी बॉय इस बार हम सुनेंगे पैगाम बदला सारा जमाना
2: सुनो सुनो हे पंडित लोगों

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय। चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बना, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा बाजी है हाय, मौका मिले तो भगवान पेट खाए।
0: मौका मिले तो भगवान पेट खाए। हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या
0: मंदिर में जो

0: Binette, oh Bianca Fe.
1: मैं हिंदर कपूर जी की आवाज़ में श्रवण किए हमें। हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको स्वागत है एक बार फिर।

मत जाओ मेरे दोस्तों, इस गीत में कितने पेस्तर है ये ना, वो लड़का लड़की को कहते हैं कि आपके नाक मोटी है। हाँ, ऐसा गीत भी आपको सुनने को मिलता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर। महमूद के

0: जी की कसम, काका जी की कसम, अरे पदम जी की कसम,
1: सबके कसमें इसमें आप सुनते हैं कि दादा की कसम, मामा की कसम।
0: भर न चला।

0: चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ,
1: मन चला हूँ। अरे मरते मेरे को ढोल शायद याद आ रहा है, अरे सल्ली ने गोश याद आवे छे मने, अरे मने पातोली माछी याद आवे छे। मैं मरने जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ की कसम, मेरे को मत रोक, मैं जा रहा हूँ। मन चला हूँ, मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मैं मन चला हूँ, मर गया, मर गया।
2: मत मोरो भैया मौत एक रोज आएगा, मोहब्बत में ऐसा ही होता है कि दिल जो दुखता है और जो हमारे सामने वाले जिसे आप चाहते हैं वो नहीं मानते है ना, तो आपको ऐसा लगता है पर नहीं, क्योंकि ऐसा मेर है से दांकेर का दस मैंने लिखा मत मरो, जिंदगी बहुत ही सीने हसीन से जियो।
3: जाती सारी सारी रहती

ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। आपके लिए फिल्म अल बेला से निकाल दिया गया है, यहाँ से हम श्रवण करेंगे फिल्म अल बेला से। मेरे प्यारे सुनने वालों की किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम, सब झेलते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है रुकने का नाम मौत, चलने का नाम जिंदगी। बस कदम आगे ही बढ़ाते चलो, चलते चलो।

Yes, yes, yes, my dear. That's life. Eh, jiwan kabhi naram to kabhi garam. जैसे खाना गरम रहता है तो आप खा ही नहीं पाते, बल्कि थोड़ा से हल्के से गर्मी रहे उसमें तो जरूर से आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आपको, जी हाँ मेरे प्यारे सुने, आपने ठीक सुनते हैं कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपका दिन शुभ रहे, आपका पल शुभ रहे, आपका समय शुभ रहे। जी हाँ,

शमशाद बेगम जी की आवाज में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने कि दुनिया का मजा ले लो मेरे प्यारे सुनने वालों और आगे बढ़ो, जरूर से आगे बढ़ो। आपका दिन, आपका समय शुभ हो, मंगलमय होवे और आपका ये पल जो है आपको बहुत से शुभकामनाएं भी पेश किया जाता है। फिल्म नजराना से हम इस बार सुनेंगे।

लता जी और मुकेश जी ने श्रवण करा दी हमको। आपके पीछे कोई दीवाना है या दीवानी है? हाँ, क्योंकि मौसम है, दस्तूर है, तो शायद ऐसे हो सकता है ना। मैं तो नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, पर संभल संभल कर।

कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, दौलत तो दुआओं की होती है जो न पानी से गलती है और न आग से जलती है। आनंद लूट ले, आनंद लूट ले ए मेरे बंदे, प्रभु के बंदगी का ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का।

0: for more entertainment.
1: अपने को क्या करना है, जो होता है वो होता ही, वो होके ही रहेगा। अपना समझते हो तो रिश्ते निभाते रहना, अपना समझते हो तो रिश्ते निभाते नहीं रहना, मुझको याद करना और याद आते रहना। हमारी खुशी तो आप है मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारी खुशी तो आप है, बस आप हमेशा हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहना।

0: और प्यार करे और प्यार करे, क्योंकि प्यार से ये सृष्टि रचाया गया है। महेंद्र कपूर जी के आवाज में किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। किसी ने पूछा फूल से, पुष्प से, कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। तो फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer

फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। रफी जी के आवाज में दिल का भंवर करे पुकार। अरे वाह, दिल में इतनी ताकत होवे है कि एक ऐसी इस शहर में रहता कोई उस ओर रहता है, फिर भी दिल को महसूस हो जाता है कि कभी किसी ने उनको याद करते हैं। जैसे कहानी कहावत भी है कि कुछ लोग किस्मत से नहीं, कुछ लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। कुछ लोग कीमत नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं, जैसे आप। जी हाँ, जैसे आप। सबने कहा कि अच्छे से जाना, सबने कहा कि अच्छे से जाना, पर एक माँ है, माँ ने कहा बेटा जल्दी आना।

जसपाल सिंह जी की आवाज में गी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। आपने इस गीत में एक शब्द सुने हैं, मेघा। मेघा वो मेघा नहीं है जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं ना मेघा केकर, नहीं, बल्कि मेघा इसमें कहता है बारिश को, कि मेघा आया रे, बारिश को कहते हैं मेघा। Levens partner moet intelligent zijn en niet mooi. Terwijl

आहा, इतनी जवां है जिंदगी, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। फिल्म का नाम शहनाई, फिल्म का नाम शहनाई नहीं खती फिर सस्तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। इसमें रायश्री और विश्वजीत एक्टर है और एक्ट्रेस है। यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में गुल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, जब याद करे।

दोस्तों, आज भी हमें कुछ अच्छा करने का एक मौका मिलता है। जैसे एक अच्छी बात, थोड़ी मदद, थोड़ा सब्र, ये वो काम है मित्रों जो दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज बाहर निकलें और किसी की मुस्कान की वजह बने मित्रों, किसी की मुस्कान की वजह बने। बेस्ट मैंसन ओक फंदा क्रैक वो वेरन कांस ओम इट्स खुद्स तो दून जो वसन फ्रेंडलिक वर्ड एन बीच हेल्प एन बीच खुदूल दिट जैन द दादन दी द वेरल्ड मूयर माकन। बेस्ट मैंसन लातन वो एरोप उइटगान एन फंदाग de reden zijn voor iemands glimlach. Oh, de reden zijn voor iemands glimlach. Beste mensen, zal dat niet mooi zijn?

साथियों, अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो वो हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मित्रों, अगर वो देर करते हैं तो वो हमारा सब्र, वो हमारा खदल बढ़ाते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते तो वो जानते हैं कि हम उसे संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। मित्रों, als God ons gebed verhoort, beste mensen, versterkt hij ons geloof. Als hij het uitstelt, versterkt hij ons geduld. En als hij niet antwoordt, weet hij dat wij het aankunnen.

भाई बहनों, नदी जब किनारा छोड़ देती है, ध्यान करना, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। मित्रों, तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में मित्रों, तो जिंदगी की रास्तों को मोड़ देती हैं, जीवन ही अलग हो जाती है। मित्रों, इसीलिए किसी के दिल को दुखाओ मत, ना ठीक बात है। बेस्ट मैंसन वनीर एन रिवीर बैतन जैन उफर स्त्रे कान है जेल्फ द रोत्सन इन द रिवीर फॉर ब्रेजलन सेल्फ एन क्लेन क्वेस्टी कान अल्स देस ओन बहांदर ब्लेफ्ट De loop van een leven veranderen. Daarom moet men niet kwaadwillig zijn. Blijf altijd lief. Blijf altijd aardig tegenover mensen. Dat is het beste wat je kan doen, lieve mensen.

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, परमात्मा कहते हैं, भगवान बोलत है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए प्रार्थना करो, जब जिंदगी शानदार हो प्रार्थना करो, और जब जिंदगी में घबराहट हो तो प्रार्थना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा राह प्रदर्शक यानी गाइड एक हेड्स बनकर रहूंगा। ये भगवान बोलते हैं मित्रों, बेस्ट मैंसन हॉट्स जेख्त अल्स हैट लेवन मुइलक वर्ड बेत अल्स हैट लेवन गवेल्दिग इस बेत अल्स हैट लेवन फरवारंद इस bid. En ik zal altijd je gids zijn. Dat zegt de Heer, beste mensen. Hoe mooi is dit niet, hè? Maar wij moeten wel vertrouwen in hebben.

साथियों, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। ध्यान कीजिए, सिर्फ हवा की दिशाएं में फैलती हैं, लेकिन एक इंसान की अच्छाई, आपकी अच्छाई या बुराई सभी दिशाओं में फैलती है मित्रों, सभी दिशाओं में। तो आप जानिए कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी कर्म कर रहे हैं मित्रों। द ह्योर फन ब्लूमन फर्स्प्राइज जेक्सलेक्स इन द रिक्टिंग फन द विन बेस्ट मैंसन इन द रिक्टिंग फन द विन मार द खुद है फन एंड मैंस फर्स्प्राइज जेक इन अल रिक्टिंग दिस व्हाट डू यू खुद व्हाट डू यू नीड खुद Dat noemen wij de karma. Die verspreidt zich in alle richtingen, beste mensen. Ik shant man, sabhi chunautiyon ke khilaaf hamara antim hathiyar hai. Isiliye hamesha shant aur tanav mukt rahe, beste mensen. Een kalm geest is onze ultieme wapen tegen alle uitdagingen. Blijf dus altijd kalm en ontspannen. Vooral ontspannen. Dosto, un logon par shabdon ko barbaad na karein jo aapki chuppi ke layak hain. Kabhi kabhi सबसे शक्तिशाली बात कुछ भी ना कहना होता है। चुप रहो, लीफ मैंसन फर्स्पिल खेन वोर्दन अन मैंसन दी ओ स्टिल्त फर्दीनन सोम इस क्रखतस्त ओम हेलमाल निट्स हेलमाल निट्स सेखन बेस्ट मैंसन डेंक हियर इज ओवर ना।

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में तीन शब्द रखें, तीन शब्द रखें, प्रयास, सत्य और भरोसा। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य आपके काम में, भरोसा ईश्वर में। मित्रों, सत्य आपके काम में और भरोसा ईश्वर में, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। बेस्ट मैनसन अल्श यदाख बखिन हाउ दन द्री वोर्दन इन ये जाक प्रोबेर वार है एन फरत्रावन प्रोबेर फॉर बेटर टुकोमस्त वार है इन ये वैरक एन फरत्राव ऑफ ये खोट दन लिख सुक्सेस अन ये फुटन बेस्ट मैनसन अन ये फुटन। साथियों, हंसना जरूरी है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमें खुश करती है, बल्कि इसके असल स्वास्थ्य खजौंतहित के लिए, मित्रों खजौंतहित के लिए भी है, क्योंकि यह आपके शरीर और आत्मा को ठीक करती है। हंसना, जरूर हंसना, और तरैतर वाला हंसना नहीं, दिल खोल के प्रेम से हंसो मित्रों। लखन इस बलंगरैक बेस्ट मैनसन नित अलेन ओमदात हैत ओंस खुलिकख मार ओग ओमदात हैत दात वैरकलक खजोंत हैत स्फोर देलन हेफ्त हैत खनीस्त लेखाम एन जिल हैत खनीस्त लेखाम एन जिल बेस्ट मैनसन ओंताओ वाते खजेगत हैत।

आइए सुबह सवेरा आप सभी को हार्दिक से बधाई है, हार्दिक से और हार्दिक से बधाई है। आप जहाँ भी हो जैसे भी हो जरूर से खुशहाल में होंगे। करो दिन की शुरुआत मधुर वाणी के साथ, उम्मीद से भरी एक नई सुबह, एक नई सुबह में आपका स्वागत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ भी है तेरे दिल में, सब उसको खबर है। ए बंदे तेरे हाल पर, ए बंदे तेरे हाल पर भगवान की नजर है। उसके होते हुए तुम क्यों परेशान है? भगवान के चरणों में तो हर समय का और हर समस्या का समाधान।

शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण को अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम

हम सभी प्रभु के प्रिय है, इसे आप मानो या ना मानो, बल्कि ये बात सच है। आज आप जो भी कार्य, आप जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, आप सभी को इस कार्य में सफलता प्राप्त होवे। हम यहाँ से भी याद करते हैं जो दुखित परिवार है, यही विनती है, प्रार्थना है प्रभु परमा

जो दुख की घड़ी है वह अवश्य से दूर हो जावे। कहते हैं कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान हमसे जो भी लेते हैं ना, उसे हमेशा हमको दुगना वापस करता है। तो इसमें आप सोचो, क्या अच्छा करते हो तो आपको दुगना भी अच्छा

से हे भगवन मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, हे भगवन मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो रिश्ता सही हो, जो रिश्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना।

तो सही है, अभी जो मिला है पता नहीं कहाँ कैसे कब होगा। ये शरीर हमको मिलेगा या ना मिलेगा इससे तो आपको ना पता होगा, मेरे ख्याल से मुझे तो ना पता है। इसलिए जो भी करना है आज ही करो, अभी करो और अच्छा करो। कहते हैं कि कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है, कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है। हम इंसानों को ये चेतावनी है कि ऊपर हमारा भगवान बंद आंखों से हमें देख रहा है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, परमात्मा को निरंतर याद, जी हाँ, याद करते रहो।

बैठो कीर्तन में प्रभु से नाता अवश्य ही जुड़ जाएगा। श्री गणेश जी की कृपा आशीर्वाद सदा ही बना रहे आपकी और आपकी परिवार पर। आपका

कितनी सुंदर भजन की चल मन चल बाबा के धाम चल भोले की धाम। ईश्वर की उपस्थित हर जगह होती है, यानी कि कण कण में भगवान है, सिर्फ उसे देखने वाला उसे महसूस वाला होना चाहिए। कहते भी कि परवाह मत करो, परवाह ना करो, चाहे जमाना खिलाफ क्यों ना हो, बस उस रास्ते पर चलो जो साफ और अच्छा हो और सच्चा हो।

आपको आज आज की तारीख, आज का दिन हार्दिक से शुभकामनाएं, हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और आपको हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और ये भी कहती हूँ कि आपका दिन मंगल

हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते कि भगवान के घर में धेरे अंधेर नहीं है, गीत में है भी और अवश्य इसमें सच ही होगा। शुभ दिन के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए, वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआई की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे, आनंद लूट ले बंदे, प्रभु के बंदगी का न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। शुभ दिन का हार्दिक से शुभकामनाएं।

फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया तुम मेरी आवाज लो मैं आ गया आप बुलाए और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों जबकि रमजान का महीना है तो हम सभी रोज़ादारों को और जो ख़ास वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं उन सभी को हम माह रमज़ान मुबारकबादी अर्ज करते हैं और ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बनारस से आप सुनेंगे

श्री घोषाल जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे पूरब से जब सूरज निकले, फ्रॉम द मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी की सेवा करने वाले हैं और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में श्रद्धा जी आपको सुनाने वाले थे। द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत से आप सुनेंगे।

बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। अभी आप सुन रहे थे दमायती मुकेश जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इम्तिहान से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में फ्रॉम द मूवी इम्तिहान से हमने पेश किए हैं माझी नैया ढूंढे किनारा, उपहार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द मैथी मुकेश जी की आवाज में।

0: उपहार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं माझी नैया ढूंढे किनारा। द माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। पिया बसंती रे काहे सताए आजा।
1: क्या कर रहे हो?
2: चोरी लागे तू।
3: माफ कीजिएगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रिया यानी पिया बसंती रे काहे सताए आजा। कहना है आज तुमसे पहली बार प्रीता मजुमदार और बाबुल सुप्रियो आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कहना है आज तुमसे पहली बार, बाबू सुप्रियो के साथ में प्रीता मजुमदार जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दिल विल प्यार व्यार। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह,

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा हाय दुपट्टा फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। और ज़रा सा हम देखे एक और दुपट्टा का सॉन्ग हो जाए, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से।

अभी आप सुन रहे थे लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, और फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगे। आपको सुनाने वाले थे अलका याग्निक उदित नारायण जी के साथ। बात होती है जब दुपट्टा का तो चुनरी क्यों ना हो जाए। आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम, अभिजीत और अनुराधा श्रीराम आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। अखिया गुलाब, जी हाँ, गीत का बोल है अखिया गुलाब और फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं और ख़ास करके ये गीत को मांग किए हैं प्रकाश दामड़ी जी, तो प्रकाश दामड़ी जी के वास्ते ये सॉन्ग हम पेश करते हैं।
1: लाइन मार रही हूँ,
2: लाइन मार रही हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे अखिया गुलाब फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और ये सॉन्ग हमने पेश किया है प्रकाश दमरी जी के वास्ते। शाडा इसरी जी भी ये प्रोग्राम को सुन रही है, तो शाडा आप ही के नाम हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।
1: For life, Nikka Singh, yo yo honey.

अभी आप सुन रहे थे दमादम मस्त कलंदर। सुनने वालों, जरा मैं आपको बताऊं कुछ बातें कि यहाँ पर बैठे बैठे मेरा गला सूख गया है आप सभी से बातें करते करते, तो क्यों ना कोका कोला हो जाए। जालिमा, एक कोका कोला पिला दो ना।

अरे शालिमा, कोला यानी कोका कोला ना सही तो पानी भी जरा सी पिला सकते हो आप। सजना वे सजना ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। और शारदा इसरी जी से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि वो कोई और गीत मांग किए थे और मैंने कोई और गीत चला दी। क्षमा करना यार। तो चलिए ये हो जाए आपका सॉन्ग।

अभी आप सुन रहे थे सजना वे सजना, और ये सॉन्ग हमने चलाए हैं शारदा इसरी जी के वास्ते। अभी अभी एक कोका कोला सॉन्ग आप सुने हैं, तो ये क्यों ना हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जब भी देखो बना ले लाल पीली अखियां, फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। शहजादा है फिल्म का नाम और गीत का बोल है छेड़ खानिया।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी शहजादा से छेड़खानियाँ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जी आदत ताई दलहम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

बातों में ऐसा उलझा दिया आदत्ताई दल हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, और क्यों ना एक ठुमका हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तू झूठी, मैं मक्कार, शो मीडर ठुमका। और ठुमका के बाद तौबा क्यों ना हो जाए, हुस्न तेरा तौबा तौबा।
1: मनीषा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हुस्ने तेरा तौबा तौबा फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज़ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले थे करण औजला।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम।

अभी आप सुन रहे थे कच्ची कलियां मत तोड़ो, मांडल ने देगी गालियां। और गालियां सुनने से पहले आप तोड़िएगा मत। जरा सा हम देखे, जी हाँ सुनने वालों, फिल्म का नाम है विश्वात्मा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।

अभी आप सुन रहे थे सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, फ्रॉम द मूवी विश्वात्मा से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मैं आप सभी से कुछ बतलाना चाहती हूँ और वो ये है, जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है, मगर टूटने से क्या डरना, हर सुबह एक नया सवेरा है, अंधेरों से लड़ना ही तो है, इस राही का बसेरा है, कुछ पन्ने अभी खाली है, कुछ रंग भी बाकी है, जो बीत गया सो बीत गया, अभी ढंग कई बाकी है, सुना है हर एक टूटे तारे से कोई नई दुआ जन्म लेती है, अंधेरों की ये खामोशी ही तो उजालों को रास्ता देती है, सख्म थोड़े गहरे हैं मगर मरहम अभी बाकी है, थोड़ा रो लिए तो क्या हुआ, मुस्कुराना भी बाकी है। त्रिदेव है फिल्म का नाम। सुनने वालों, इसी फिल्म से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते तिरछी टोपी वाले।

अभी आप सुन रहे थे चिट्ठी टोपी वाले, म्यूजिक दिए है आनंद बख्शी जी और आपको सुनाने वाले थे अमित कुमार और सपना मुखर्जी। दुनिया हसीनों का मेला फ्रॉम द मूवी गुप्त से आप सुनेंगे उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। बढ़ चलते हैं हम फ्रॉम द मूवी थानेदार की ओर और इसी मूवी से हम पेश करते हैं तम्मा तम्मा लोगे। आपको सुनाने वाले हैं अनुराधा पौडवाल और बप्पी लहरी जी।

अभी आप सुन रहे थे तमा तमा लोगे, बप्पी लहरी और अनुला यानी क्षमा करना सुनने वालों अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। मोहरा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं उदित नारायण की आवाज में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले सुनने वालों में आप सभी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मोहरा से

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मोहरा से हमने पेश किए हैं उदित नारायण की आवाज में तू चीज बड़ी है मस्त मस्ती, यानी उदित नारायण और अलका याग्निक जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खुदगर्ज से हम पेश करते हैं मैं से मीना से ना साही से ना पैमाने से दिल बहलता है मेरा, कैसे बताऊं नहीं बताने वाली, बस आप खुद सुन लीजिएगा।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी खुदगर्श, हमने पेश किए हैं मैं से मीना से ना साखी से ना पैमाने से दिल महलता है मेरा कैसे, आप लोगों के आ जाने से यानी आप लोगों के रेडियो सुनने से। अलका याग्निक और उदित नारायण प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू, फ्रॉम द मूवी राजा से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे अखियां मिलाए कभी, अखियां चुराए क्या तूने किया जादू, फ्रॉम द मूवी राजा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम यानी श्री राम जी आपको सुनाने वाले हैं आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1 से हम पेश करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी है दुआ रब की अदा कह के शुक्रिया जी लो ना। और ये गीत हमने पेश किए हैं राबिया जी के वास्ते फाहौन क्रू की ओर से, जबकि राबिया जी का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद और खुशियाँ ही खुशियाँ पेश की जा रही है फाहौन क्रू की ओर से। हम बढ़ चलते हैं अगला गीत।

Oh baby, don't break my heart. अभी आप सुन रहे थे from the movie मोहब्बत से हमने पेश किए हैं और ये गीत कमांड करने वाला था अनिल सारजू जी अपने प्यारे प्यारे जीवन साथी अपने प्यारी प्यारी प्रीतमा के वास्ते यानी राबिया के लिए. जबकि कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को राबिया का जन्मदिन जो है तो बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ अनिल सारजू जी ने ये गीत को मांग किए थे. प्रोग्राम में एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं और जबकि राबिया जी का कल जन्मदिन जो है यानी कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को तो अनिल सारजू जो प्रीतम होते हैं जीवन साथी होते हैं अपनी प्रीतमा के वास्ते एक बहुत सा सुंदर गीत को मांग किए हैं और गीत का बोल है तेरी कुर्ती क्या है बड़ी सेक्सी है यार

अभी आप सुन रहे थे तेरी कुर्ती सेक्सी, और ये गीत को मांग करने वाला था अनिल साजू जी राबिया के वास्ते, जबकि राबिया का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को जन्मदिन जो है। तो प्रीतम, अनिल साजू जी ढेर सारे बधाई, शुभकामना और खुशियाँ पेश करते हैं अपने जीवन साथी के वास्ते। प्रोग्राम में आ रहे हैं आप सभी के वास्ते सरस सा हम देखे। जी हाँ राबिया जी, हम आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद पेश करते हैं फाहौन क्रू के ओर से भी। और राबिया, जबकि कल यानी सोमवार 10 तारीख अगस्त को आपका जन्मदिन जो है, तो खुश होकर के प्रोग्राम में अनिल साजू जी जो आपका जीवन साथी है, ये गीत को मांग किए है बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ आप ही के नाम। ठाड़े वास्ते दे देंगे जानवे फ्रॉम द मूवी शकलाका बूम बूम।

अभी आप सुन रहे थे थाड़े वास्ते दे देंगे जानवे, और ये गीत को मांग किए थे अनिल सरजू जी अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी प्रीतमा के वास्ते, यानी राबिया के वास्ते, जबकि कल राबिया जी का जन्मदिन जो है, कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को राबिया जी का जन्मदिन जो है, तो से ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया गया उनके प्रीतम जी के तरफ से। राबिया भाभी, पार्टी कहाँ पर होने वाली है ज़रा आप बतलाइए तो हम ज़रूर आ जाएंगे आपके पार्टी में शामिल होने। फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वेयर्स द पार्टी टुनाइट, और ये गीत हम पेश करते हैं राबिया जी के वास्ते, जबकि राबिया जी का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया जाता है फाहुन क्रू के ओर से।

0: वेस्ट पार्टी तुनाई तभी आप सुन रहे थे और ये गीत हमने पेश किए हैं राबिया जी के वास्ते, जबकि कल राबिया जी का जन्मदिन जो है यानी सोमवार 10 तारीख अगस्त को, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद पेश किया गया है राबिया जी के वास्ते। और हमें आशा है जिस तरह से हमने कुछ फरमाइशें पेश किए हैं राबिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फाहुन क्रू के ओर से, तो राबिया को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, कुनाल गंजावाला आ रहे हैं, चनावे घर आ जावे।
1: आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं,

कुना और गंजावाला आपको सुनाने वाले थे चन्नावे घर आ जावे। मैं हूं ना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ क्या कहें।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना से हमने पेश की है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे सेयोरिता।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सेयोरिटा, और सेयोरिटा के बाद हम एक और सुंदर सा गीत चलाने वाले हैं, और जबकि ख़ास करके मीला भी प्रोग्राम को सुन रही है, और अभी अभी मीला का तार आया है अंदर, और मीला क्या कहते हैं कि हम बहुत मज़े ले रहे हैं आपके प्रोग्राम से। तो मीला जी, ये गीत हम पेश करते हैं आप ही के नाम।

मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए फ्रॉम द मूवी दबंग से हमने पेश की है, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं मीला जी के वास्ते, जबकि मीला जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। तो मीला जी, अभी अभी आपने तार किए और कहा कि मैं बहुत सुंदर प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, तो ये गीत हम आप ही के नाम पेश किए हैं, और हमें आशा है कि जहाँ पर भी आप होंगे आप ज़रूर नाचे हुए होंगे इस गीत के साथ। कल हो ना हो है फिल्म का नाम, तो इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इट्स द टाइम टू डिस्को, क्योंकि आज आज पता है क्या है, नहीं बताने वाली।

अभी आप सुन रहे थे इट्स द टाइम टू डिस्को। सुनने वालों, ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। जरा सा हम देखें, जी हाँ ये हो जाए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर ज़िंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज़। Have a nice Sunday and take care of yourself. Till next time.

चिनीच कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहून के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से और यानी कि ऑनलाइन हैं। अगर या आप हमें देखना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, तो आप लाइव आ सकते हैं और हमारा प्रोग्राम को देख सकते हैं। जैसे भाई टोनी इसरी आ गया है और वो भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हैं बड़ा जोर शोर से। तो सोनी जी, टोनी जी, आपको हम यहाँ दनहाख में स्वागत करते हैं अलमेरे शहर से। हमारे प्रोग्राम में आपने भाग ले लिया है, ये है टोनी इसरी जी, नमस्कार हो। तो हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश की समाचार की ओर। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, तो बातचीत क्या है हमारी जनता? वेनेजुएला का कहते हमारा सूरीनाम देश के वेनेजुएला जाने हैं, कुछ दिन हो गया है वहां पर अर्थक्वेक हुआ है और सूरीनाम भी अपना हेल्प को आन्वित किया है, लेकिन यहां अब कुछ और लिखा है भैया। वेनेजुएला के बारे में बोले सूरीनाम खनुम थे वेनेजुएला सूरीनाम खमूद एगो आस रूता है, सरनाम एगो रूता है, वेनेजुएला से रूता है, जोन कोकाइन या सरनाम से यूरोपा में जा है। हाँ तो धर्मेंद्र वेलकम। तो बताए गए हैं धर्मेंद्र कि सरनाम जैसे को स्लोप रूत जो आदमी शिकारी कार खेले है जंगल अंगल जा है तो लोग जाने रस्तों कैसे बोरो करके हिया जा है हुआ जा, तो ऐसे सबन कोकाइन रूत बनाए से फान पारामारी बो सूरीनाम नार है यूरोपा, यहाँ लिखा गया है हमारी जनता। तो हम बोली बताई वेनेजुएला के हुआ के रखेरिंग बोले है गा अंदर देल है जो इंटरनेशनल स्मोकल रूट है वेनेजुएला के, वो जा है फिया सूरीनाम से। वेनेजुएला के रिसर्च बोले है गा बोले जितना क्रिमिनल और खानी साक्षी है, हाँ बोले जो उनके समान अपहरोत बा जो उनके पकड़ी से बोले है गा दी फॉल्कंस हेट ऑन द सुख बोले उस सब खबरों की मांग करता क्लांड सिटी द लैंडिंग्स बान इन द स्टार अनजोवाटिगुल में, वे को लैंडिंग्स बान है हुआ से समय प्लेनों उड़ावत रहा पूरिया से नाना, और बोले है का बेड ऑपरेशन बोले आठ गो लीडर के समान पकड़ी से का बड़का और खानी सांसी के वेनेजुएला में, बोले जेकर पास भैया ओ तो मोई मोई मिलल है बंदूक मिलल है कम्युनिकेशन अपराट्यूस मिलल है एंड अंदर खुदरन सब असलाख ले ली से, और बोले इलिखाल लैंडिंग्स बान भी पाई से, और बोले ऑन द सुकर्स बोले है ये सब ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होवत रहा, और बोले सब ऑन क्लार करी से और रूतराफिया सूरीनाम भैया, यहाँ बताई गई फोर्कस ऑफ फेनिशियलंस ऑन द सुकर बोले फरफूर द ऑर्गेनाइजेशन बोले कोकाइनवा बोले वेनेजुएला से ले जात रहा गयाना, गयाना से ले जात सूरीनाम देश, दस वेनेजुएला गयाना के बगलिये में बा, तो अपन प्लेनुआ में कोकाइनुआ ले जाता गयाना इंग्लिशमान के देश में, तो हुआ से आवत रहा सरनाम में और सरनाम से पूरिया जात रहा यूरोपा के बाजार में, ना दनहाक के बाजार में यूरोप से मरक पे जात रहा, बोले यही है का स्मोकल रूट जो वेनेजुएला से कोकाइन जा है यूरोपा में फॉर दोफन मिडल हिन एन बस्ते में बराई कंज यूरोपा में आ जा भैया, तब हुआ एन बस्ते में है तो यूरोपा में सब इधर उधर बोले बिचाई शुरू हुए है, तो एकर बारे में फिर वेनेजुएला के ऑथोरिटेटन ऑन मांतल कैसे को बड़का और खानी सासी के जो इंटरनेशनल ड्रग्स सबन यानी कि पठावत रहा यूरोपा में ऑन द सुख मुख लगे मेड फरदाख्तन एंड इंटरनेशनल फर van het netwerk wordt voorgezet abbe saban doro khoje hai ki aur ka hai ekar bare mein, to ye hai venezuela guyana
और सूरीनाम से कोकाइनो अवतरा रोपा में हमारी जनता। तो हमारा बहन भाई आ गया है सैफ बी लेडिंग से, वो है चित्रा अवतार। आपको हम स्वागत करते हैं दीदी जी, हमारा प्रोग्राम में भी आप भाग ले लिया है, जुड़ गए हैं, बस सुनते रहो और आगे के समाचार आप लोग को हम क्या क्या बताएंगे। सूरीनाम के बाद में सूरीनाम में यानी कि हुआ स्कूल के लड़कन भैया डिप्लोमा पावे वाला है, जो सलाख भाई है अब सितंबर मानदा आने वाला एग्जाम प्रयुदय है। और यहाँ बतावे है का वांग का बोले वांग भैया, फिर यहाँ पे के को पार्लियामेंटारियर है उसका नाम बा शुवांग राय वांग बोले है। अब देखो का भर सूरीनाम में जितना लड़कन सलाख भैल मेजरबार स्कूल के बोले उस सब जे जाई अपन डिप्लोमा लेवे के संबंध के चाहेगा फिर 105 तक एसआर दे भरे के। हाँ मुझमुत 450 SRD बताल ओम द डिप्लोमा तो ऑन फंगन इची तुम पहला नहीं सुनी ला भैया जइयो अपन डिप्लोमा एक तो मेहनत कर लो है अब सलाख भई लो है और अपन डिप्लोमा लेवे के तब जइयो 405 तक SRD भरे तब जइयो अपन स्कोर्स डिप्लोमा पियो। एक बारे में यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियन और हैगा युवांग रोई वांग एक दौड़ रख के दे नाम एक बारे में बोली से कि मेदर बाल स्कूल वार खसलाह दर ले लेंगे मुझे सूफिल खेल बता लें और बोले हैगा डिप्लोमा ऐतराइकिंग पे कुछ है 405 तक भर देवे के खवार मेरे तक कॉपियन कोम दान 105 एंड 66 ऐसा देर बे बोले जो तुम मंगे कि उस सब तरह का कॉपी भी बनाई देवे तो कुछ है 105 एंड 66 ऐसा दे भरे के तो खवार मेरक तो कॉपी है तो के बनाई दे सरकार को कॉपी भी तो के बना दे ओकर खा भी पैसा भरिए। तो बोले यंगरन हेवन हील यार हर्थ खबरक मेन से हाँ लड़का स्कूल में काम करिस अपन और उसे मेहनत करके अपन डिप्लोमा निकाली से और बोले ऑफिशियल बवेस एंड वार देर फन प्रेस्टासी से दवांग एंड मुझे सुनो खल्त एर फुट बतालें। तो एक बारे में बसवार करी से भैया पार्लियामेंटारी दैलक हैद मांगी सेगा का बोले मिनिस्टर डेरक क्यूरी से जो अंदरवेस के यान के मिनिस्टर हैं और बोले हैगा बकैन खवर्धन के खसलाख दफा मेरे बार स्कूल अंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी के जो जो हुआ पे खसलाख भैल भैया 2026 तक 2027 में बोले उस सबके चाहे और भरे के मेयर से नूतन बता लें और इंस्क्राइब ये इंस्क्राइब करे तो अब तो चाहे इंस्क्राइब खेल 5000 एसर दे भरे के जो तुम ये यूनिवर्सिटी में जाए के और जेकर बाप माई गरीब है भैया वो कैसे भरी धिया बताई गए हैगा कि पहले रहा कोलेश में उस सबके इंस्क्राइब के अल्ट्रा 4200 एसर दे अब ये रखे रहे जो आए गए हैं सिमोन्स के और रुसलान के अब वो 800 दिराक बढ़ाए रही से और हो गया 5000। और एक बारे में बताई से कि जो लड़कन डिप्लोमा जाए मेरे बार वो के चाहिए 450 भरे के और कॉपी मंगे तो कॉपी भी तो के दे तो वो कर खा तो के उनको फिर 4500 एसर दे कॉपी के भी पैसा भरे के परी। तो ये बात है हमारे जनता सूरीनाम के बातचीत हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे जनता। और तो लोन जानो भैया यूसीसीएन पुलिस के नाम बहुत बिगड़ल है भाई अब मैं बतावे अरे तो लोन जाने अब क्विकवा ना मिलल है भाई जो चोरी बैला कौतुक पुलिस विरोध से तुम एक बारे में जानो है ड्रग्स लाश हुए है सोना लाश हुए है स्कौतु ले ले भग या भैया लेकिन अब तमाशा देख भाई बहुत बड़का चकल्लस वाला चीज है मुर्गी के बहुतू सबन जो खा है जनता ओके सबन बसलाख करेला उसको तो चरा ले भैया अब एक बारे में हम तुल खबरें हम बताब यहाँ पे जो ओकर बेड़तवा आई तो ओकर बारे में बतिया। और हमारा मिनिस्टर जो है हनीस मनोरथ का बोले है वो खाली अपन यूसीसी के नाम फार्म बदले भैया चोर और ठीक से ना पकड़े मुर्गी बहुत तात देशों में से चोरी होवे लगल है तो मिनिस्टर बोले बोले अब हमार मिनिस्ट्री के नाम ना है ना मिनिस्ट्री फॉर यूसीसी एंड पुलिस बोले हम लोग के मिनिस्टर के नाम हुई है
ministerie van justitie en veiligheid. Veiligheid, ja, keer veiligheid. Kan zijn naam me waaien, ben wat daar ben. Kiedam pe chalat admilok ke balkon me roof hoe we, charo bagal roof hoe we heen. Ahamar hanis manorat, naam van ministerie, Jespol Jorha. Ook een naam 7 tarik augustus ke. Officieel, willen verder gaan. Aan naam ministerie van justitie ken her deze. Minister van justitie en veiligheid. Het heeft minister Hanis Manoder woensdag bekendgemaakt. De naam wat lessen je veiligheid. Hoe jij gaan, bhaiya. De oma, bahut badka kaam hai. Naam toro kaam chahe badlek to humar, bhaiya. Kumar Shami bhi aayega. Rakesh Samuj bhi aakar humar prakram mein jut gaye hai. Toro ke jab naam badal lega. UCC and police ke. Ki UCC and veiligheid. Agar matlab na to desu hame veiligheid kar diye. Wie maakt deze man voor de gek mensen? Naam zegt niks. Je moet je werk gaan doen om de veiligheid van het land namelijk te waarborgen. Om de veiligheid te garanderen voor onze mensen in Suriname. En dat hebben we niet. Volgens de bewindsman is de naamswijziging 10 tarik augustus geformeerd. Ze hebben doorvoerker eraan. Op Bolle Hega, minister T75 jaar bestaan in ministerie. Manora gaf aan dat de wens om de naam van het ministerie te wijzigen al reeds 20 jaar bestaat. Maar de keuze voor de term veiligheid wil de regering benadrukken dat alle veiligheidskorpsen onder één noemer worden gebracht. Dus we hebben een keer een mooie veiligheid, je derde wit kamloon, janta ke utra veilig bieden karpabe, kina bieden karpabe. Abole utra dinsje ze van mangen trakere, bole na kape abde ko bhaiya ego nikeri ke baad de. Inspecteur otom jatra bhaiya jure oto ulit ge nikeri me, haan. Ab pata na hai kaban daru dhakole ra ki kaunchi dhakole ra bhaiya hua dhakole. राज बड़ा ढेर चले है तो 12 दिन पे भैया बुद्धू आएंगे है कहां रहले दिल पे बुद्धू स्वागत है यारो आपके देख के दिल खुश हो गया तो बुद्धू बात ऐसे भैले बोले निकेरीम सिपाही जा ऊपर से इंस्पेक्टर भैया झूरे ओ तो गोत्रों में उलट गए है तो बोले रस्तो में होल्ला बोले अंतवे कल्ली बाटी तो जितना ओ तो होलवा में से अंतवे करे तब तो सबके चांतरा उलट जाए के दिस दैट क्लब तो नहीं मेंस Klopt niet. Kiet je gewoon hol kan ontwikkelen door auto

हाँ दोस्तों, तो निकेरी के मानचित हुए के इंस्पेक्टर है, बोलो बैठल रहा हो एक मेला तो हुआ चलावत रहा और जाए के वो तो गोत्रो में गिर गए है, उलट गए दो तीन कलैया मारी से। निकेरी के मानचित हो बोलो अटवेक कर ले रहा होल के, तो होलवा सब कोई जो अटवेक करे तो हुआ दिन भर चाहे वो तो उल्टे के उमा जरूर कुछ भेद हो, लेकिन ओकर बारे में सब ना बतावे हो सके। वो तो हुआ चलावे और ढकोले लाल हो सके है, सब टेलीफोन में बेशक हो सके है कि सब ख्याल ना करे जो होलवा नाम ना ताके हो सके बड़का सरल है पे हुई वन तो वह कई कलैया काट से दस सेख से सेख बोले अंतवेक से को होल के तो वह उलट गए भाई। सो मकलक इस इंसुरी नाम दस मकलक सन फाउट कुने खाम बदेके मेंसे सांदर ओवर हिन होए कि कोई न जाए अंडरसुक करे मत सैन वे ही नी लॉन्ग दिन बदु हम लोग एको बात जब तिया इला ता हम लोग ओके इन्नम जर्सी ले के पुणे तक ओके ताकेला कि चीजवा कैसे है कैसे ना है और झूठ ये बोलियो भैया तो वही आदमी लगे पास हो ये जे झूठवा ना पकड़ पाई मार हम लोग यहाँ नीदरलैंड में वह कह के फेरदर ना बोले हुआ के आदमी ना देखेगा मर मिंदर सवन आंदाख देवे है हिया बोले हैगा इंस्पेक्टर सिकन हाइस में गई है बोले द तू द्राख फान है उनका फॉल वर्ड फेरदर ऑन द सुक नतीले आई ही नार में भाई ले ही द साक ओवर खदराकन फरकेट ऑन द सुक रिहु वेस्ट में। तो यहाँ पर हम बोली तुल के बताए दे एगो वेतियोता अक्षियो रहा डोंडरडाग के रात के खराक बे एन एनसाइडिग फरकेटसऑनगेलुक इन द ओमगेवन मिडस्टांड पोल्डर इन सुरिनामे तो बताए गए हैगा बोले ओंटवेकन फॉर एन कुइल मेंसे दैट लाइक मी हील एर स्टर्क ऑफ दैट वेल वार इज जानो बॉस ब्रक सुरिनामे सब कोई जा ही असर नाम से हमार तोनी जब जाए तब पर मुतर फिसवा उड़ावे है बुद्धू भी उड़ावे है सब कोई जा है बॉस ब्रक पे भैया बकी तू पड़ किया जो है ओकर अंदर हो वो होवे कि ना होवे है जब सुनियो तो आदमी कूदे है छलांग मारे जैसे स्वयं बात के काबुल स्प्रिंग प्लंक पर से सब कूदे ओइसे हुआ कूद कूद आदमी जान देवे भैया हली एगो लड़की कूद के मर गए रहा तो एकर बारे में एगो मलैनी है शादी है भैया एनडीपी के और इस शादी बोले बोले कि अन वैद्य बॉस के बड़ो की चाहे अंदाख देवे के ना कि कुदियो पर ना अंदाख देवे के बोले हैगा अन शादी बोले पार्लियामेंटारियर है बोले कम टेकनिंग बना है बोले द ब्रुक इस मार क्लास से स्टक द पार्लियामेंटारियर फ्रा कि बोले हैगा चाहे इंस्पेक्सी करे कि बड़ो के गिर ना जाए सब कुछ बेतन तन मोई है कि ना फॉर हर इंफॉर्मेशन इज द ब्रुक मार क्लास से स्टक एक्ट दारिन टू इन daar tegenover is een feit dat de brug sinds haar oplevering in het jaar 2000 inmiddels maar 26 jaar hoe je zwaar overbelast barka barka teruggrind leek ja hij santi leek ja hij olie tankers houtblokken moet dragen door de volksvertegenwoordiger werd er vooral opgewezen dat de dynamische belasting heel funest is door het trillingen waaraan de brug op het dagbasis wordt blootgesteld door iemand ze zat is te hem eens Bartie कि जब एगो चीज है तो ओके चाहिए अंदर हाउत भी इखरे की। हाँ तो हम भीन जाए ना हनीस मनोरथ लगे भैया मिनिस्टर मनोरथ बोले हैगा बोले फॉर कॉमन द सुरिनाम एंड पॉलिसी स्टार्ट ik weet niet wat deze meneer Manoret allemaal wil namelijk justitie en politie en naam dat is justitie en veiligheid of willen voor zelfstandigen van afdeling instituten willen hij ook een mange kere daar willen preventie van de criminaliteitbestrijding in de enige benadering en als satarike willen 75 jaar bijlega minister van justitie en politie bari lamba chora likale maar ik hem ter is hebra kari dosto karen की और जा रहा है अच्छा अच्छा और न्यूज वहां हमारे पास जो आप लोग को हम नतीजे सुनावे मांगेला। अब देखो भैया लोग बोलिए जोनी कुछ इन बराक के राख के बारे में इन बराक के बारे में खोजे कहिए ना है बुद्धू जा खोलिए भड़ आवे इन बराक सुरिनाम में फन हीर तो दार है और हम लोग के मिनिस्ट्री बोले है बोले हम लोग फैल खाइट हो गई बाटी माहिया बतावे हैगा पॉलिसी फरे बकी तुई होंदे देर तक आदमी के पकड़ी से रखस्त्रेर करी होंदे सेशन सेफ तक घर तुरान भैया होंदे सेशन सेफ तक इन बराक एक महीना में होंदे सेशन सेफ तक घर तुरान है हमारा सुरिनाम देश में। हाँ तो एक बरिश में कितना होएगा भैया कुमार एक बरिश

में कईगो होएगा तो एक बरिस में तो कईगो या 12 दाई होंदे से इफने शास्त्रक जे जोल ले तो 10 दाई तो 1700 1800 काने कैला हो जाए भैया हजार बड़ा होइए जोन खाली हम लोग के घर में हम लोग के देश में घर तुरान है और ओकर बारे में होंदे सेशन से इफ तक इन बराके में तुए होंदे देर तक आदमी के पकड़ी से मना सोचे हर एक घरों में एक आदमी जा है उ सब जा है चरवन तो अपन खुरु बन के जा भैया जैसे पिंगो पकीरा जा है आंख बन कर ले करिया मस्कर पहन ले पिस्तौल कटली चांपू हथौड़ी फतौड़ी ले के जा जैसे टेमड़े मान भैया तो यहाँ बतावे हैगा ट्यूशन से इवनिंग ट्विन तक यूनी एंड ट्वे ऑगस्ट लंदलक से बन ट्वे हंड्रेड डेर तक अनिमिक पकड़ी से और बोले हैगा ओमा से हंड्रेड फीर फिर तक वो फरदाख्त है अब बेना वो इसको ही है और बोले हैगा जोन बंदूक से खवेल से बोले हैगा अनमी लोग के मिसंदल करके ली से एमा से दे देर तीन गो खवापन ओवर फाल भैगा पंचाइफन देर तक गो सबन बरूफिंग करी से पिस्तौल से रूफ करी से फेफन देर तक को ओही बदरखवा में से जो हम बता रहे ली फेफन देर तक को खवापन द ओवर फाल भैले साथ ही साथ अबे बता रही हूँ दस से इवन तक इन बरा के घर तुरान है और रेवेस इन डर तक गोक समान ले ले सेगा बोले जेमा दुई को बंदूक भी मिलल है पिस्तौल भी मिलल है और बताए गए हैगा डर तीन को खफाल रख स्त्रीर भाईल है और बोले है यहाँ पे दोस्तों कोरस पुलिस से नाम ब्लेफ पुलिस पर्सनल से ऑन द स्कार्स मिडल एंड अंदर बपेर के इनसेट ऑन द फेलाखाई इन इट लांत वारबोर्गन तो आप लोग को हम यहां से बधाई देते हैं किसको तू और जोर से काम करो सही फरवा हमें बड़ी कमती लगे है बहुत कमती लगे है और बोले तो हमार काम है भैया हम मीडिया के जबले हम लोग के असली असली यानी कि रिजल्ट ना मिली हम लोग कभी पूछती बोले वाला ना है वैसे स्क्रिप्ट थी de regering. We zijn scherp tegen de overheid. We zijn scherp tegen de politieapparaten. We zijn scherp tegen onze mensen. Iedereen moet veilig voelen in Suriname en ook hier in Nederland. Totdat ze niet meer veilig voelen, zal ik door blijven hameren mensen. Dat is mijn werk en niet anders. तो हमारी जनता हम चलते हैं आगे को अपना समाचार को लेकर हाँ तो हम भी आप लोगों को कुछ बैतलान के बीच समाचार को सुनाएंगे अब देखो भैया तुलो जानो है हम फिन जाएला का बोले हॉर्मुस के ओर स्त्रात हॉर्मुस तुलो सबको जानो हर हफ्ता हम ओकर बारे में बताएला और वो हैगा ईरान के यहाँ से सब बुटियन आवे तेल के प्राइस चढ़ जा है तेल के प्राइस चढ़ल जा अमेरिका बम्बा देर करे ईरान के कि स्त्रात हॉर्मुस कोल बुटियन फिन हबड़ा हुए हम लोग के तेल आ चुके तुई यूरो फिर तक फाइव हंड्रेड तक आएगा यहाँ पे भैया और तेल चढ़ जा है एक बारेल रिव तो रिव ओली हो ये मेयर दन हंड्रेड डॉलर हैगा इनफैक्ट साथे साथ अब अमेरिका ना ले से हॉर्मुस के बारे में तो अभी क्या करे है ईरान जो नहींगा सऊदी अरबी एक भी दागे लगल भैया यॉर्डानिया के दागे लगल जहां जहां हम लोग के यानी कि जहां जहां त्रिम के अमेरिकान से बास से उद्देश्यों भी बसकादक करे लगल है तो अब इस एक में तो उदक हो जिसेगा कि तीन देश एक होइगे भैया मेरे औस्त के तीन देश और एक होइगे वो हैगा सऊदी अरबी पाकिस्तान और तुर्कू तुर्कैया भैया तुर्कैया सऊदी अरबी पाकिस्तान और तुर्कैया उस एक डिफेंसी अकॉर्ड करी से जैसे हम लोग के यहाँ पे यूरोपा में हम लोग कहेगा एयू हैगा स्टेन देर तक कि कितना लंद है फ्राक में इवन इट प्रसिद्ध मैं वो बीते वो सैन इन एयू वो सैन इन नाटो लम दस शख द तो नाटो में जो तू कुछ कल्ले बाटे द खाद हेल नाटो ठीक आन ऐसे सब में मेरे उस में तीन देश हैगा जो अपने में को अकॉर्ड डिफेंसी अकॉर्ड तीकन करी सेगा कि हम में कोई दागी तो एक वो हम हेल्प करी दोस्त तीनों देश के तू अनफाल कर ले बाटे तो लंगा डाम से हमारा हमारा लीफ टाइट खनोत हमारा स्कूल के दोस्त जहां हम लोग संगे स्कूल जात रही एट के एक लंगा डाम पे वो है रॉय काली भी आ गया है तो हमारे प्यारे दोस्त आपको हम बहुत प्यार से अपना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं तो हम चलते हैं स्वागतम तो हम चलते हैं सऊदी अरबिया और पाकिस्तान
के बारे में और तुर्की के बारे में इन तीन देश एगो डिफेंसी अकॉर्ड करिसना शाम में डिफेंसी मतलब कि मिलिटेर के समय जितना है तो एक बारे में टोनी भैया सुर जाती में रहो तो डिफेंसी के चीज ढेर जाने न तुल जितना आदमी ऐसा सुनेगा हिल्फ में से वेट व्हाट डिफेंसी डिफेंसी अकॉर्ड इज. Maar ik zal het toch even beter nog proberen uit te leggen dat het nog goed overkomt. Defensie zijn de militaire akkoorden. De militaire akkoorden is op 10 des teken. Dat is dat je iets in de zwak je kooi daar gegaan. Als je kooit uit de kijk, dat je ik woon des van het hele toe bij mij te gelen. Maar je zegt hem ook een NATO-landen. Hij gaat. Dus ik president John Hega Erdogan. Saudi-Arabië, ik kroonprins Mohammed bin Salam. En. पाकिस्तान के जो प्रीमियर हैगा शहबाज शरीफ है और इसे मक्का में गईल है सऊदी अरबिया में और वहाँ पे तेकन करी से कि इस तीन देश के ये छुईगा दागेगा बोले तो हम लोग के दागे से ईरान इस सब के दागे से यानी कि सऊदी अरबिया के दागे से यॉर्डानिया के दागे से मिडन ओस्ट के बारे में है हमारी जनता तो यहाँ बतावे द ओवर इन कॉम सिम्बुलेर द खसाम लगे इन सेट फन द्री स्टाटन ओम हिट कॉलेक्ट actieve veiligheid te versterken en vrede, stabiliteit en welvaart in de regio en daarbuiten bevorderen. Het komt naar de Pakistanse premier Saheb Sharif, Turkije Wala Erdogan en Mohammed bin Salam 28 februari ke ek bare mein aur kaam kari se teken hui gaye hain aur cheez likhal hai dosto lekin yahan bataye gaye hain that Pakistan's carrying weapons and ervaren legers Turkije geëvanceerde wapensystemen in een lidmaatschap van de NAVO en zou de Arabische economische macht ontstaat een krachtige alliantie die gericht is op het collectieve veiligheid en stabiliteit. Mensen, laten we even hopen dat de oorlog tussen Amerika en Iran stopt, mensen. Dat wij allemaal op dit moment zo duur betalen voor onze benzine. Hamloke telke, hamloke trabharela. Aur isab chitja hi wel. Verbeter hoe ik je. Maar jab dekho te stop hove, okar baat me wapen invoer kan lewe hege, ta fin suru hoja hai, oorlog hove ke. Hai nai chi joa hamare nani. To, ha, mare pyare pyare janta, आप लोग सुने हुए हुतुस के बारे में रोई हुतुस के तुलन जने हुए येमन में है भाई येमन जो समय पे अमेरिका और काबुल है ने इसी ने ईरान लड़त रहा तो हुतुस येमन में को ग्रुप बनाई से तो ई सब दागत रहा यॉर्डानिया के तेल के बोट डागेरा भैया ई सब अनफाल कले रहा यॉर्डानिया के तो यॉर्डानिया की सब दागे रहा येमन में इस सब एगो ग्रुप हैगा कहां बोले हैगा येमन में वारफान येमन हैव सन एक रखेरिंग एन एक लेखर है जैसे हेजबुल्ला हैगा ऐसे एहू सब हैगा हुतीस तो इस सब काम करी से अपने ही देश में अब दागे के शुरू कई से येमन में एक बार में हुतु एक रिबेल ग्रुप है यार रिबेल है भैया जैसे अब हम बताएला कि अन रिबेल इस टेररिस्ट सेख मार तो इस अब येमन में बा अब येमन में शुरू कई से का बड़का बड़का वापन से दागे के और इस अब किस ट्रेन के करे ईरान करे भैया ईरान करे है हुतु रिबेलन ड्रोन अनफाल करेगो प्रोफेसी के नाम मारे येमन में और वहां पे बहुत आदमी के दाग के माढ़लने हैं और यही में से मिलिटेर ब्रोन जोन बतावे हैगा बोले 85 तक मिलिटेर बोले ख्रोता अनफाल हुतीस करी से जोन उसब के सुर जाती उतरा ढेर मर गए ओही देशवा में और बताए गए है कॉन्फ्लिक्ट इन द दौर ईरान खस्ती द हुतुस ए इंटरनेशनल एरकेंद रखेरिंग फन येमन और का बोले जोन येमन के रखेरिंग ओके इंटरनेशनल ओके एरकेन करी से हुआ रखेरिंग के तई हुतुस ना मांगे हुतुस मांगे देश वाले वे वार ऑन द होस्ट सा साना का नाम भाई येमन में बीते हुए महीना में लुक्त अनफाल भैया साना में भैया हुआ सब बमदेर कर ले रहा एगो ईरान से तुस्तेल सौ क्यों लंदन बड़े लुक्त रीस फॉर हेल्स अक्सी ऐ सऊदी अरबिया के दर फरांतुर लगवार को हो दर फोर द अनफाल तो जनता आप लोग को हम
बीच बीच में मेरे ओस्तम के भी कुछ बातचीत आप लोग को हम बता देते हैं कि मेरे ओस्तम का हुए कारण कि लोग सूरीनाम के न्यूज सुनते हैं लेकिन हमारा कहना कि बैतलान की न्यूज भी आप लोग को जानना चाहिए कि हमारे देश में होता है क्या वो तो हमको मालूम होना चाहिए लेकिन और देश में क्या आप देखो भाई अबे आप बता रहे ली बता रही रॉय सुनिए स्पांग सूरीनाम देश में भैया कुवैत चोरी हुई है आज तक पता ना मिलल है सोना चोरी हुई के आज तक पता ना मिलल है कुवैत कोई डाल दी से सर मक्का में कहां बेना लाद सब मछली मर के उतराई गए पता ना मिलल है और कितना कितना इसको तू एगो बड़का दृक्ष गिले से कई रिश्तेदार के पुलिस ब्यूरो में से निकाल दे से पता ना मिलल रमिया कहां सबन खोजे है इसको तू पकड़ाई के बन भइल है तो इसको तू लोन सूरीनाम में भैया चुकू लेवे है 2000 डाला भर दिए तो कफर ब्लाई फर क्रेडिट मिल जाए निकल ला भैया बीते हुए दिनों में बता रही लेकिन यहाँ बातचीत हुए अब सरनाम के सिपाही बस लाख करी से मुर्गी के बहुतू मुर्गी के बहुतू बाकी अब मुर्गी के बहुतू पते ना मिले कहाँ है बुद्धू अब देखो चकल्लस भैया मुर्गी के बहुतू अब पते ना मिले अब सबन देना में खोजे है कोको लंपू बार बार खोजे देना के कुर्सी के नीचे बार बार खोज एक ओवर ड्राइव में बीच में से मार दे बदुलिंग इस नाम ले ओवर वार ओवरऑल वर्ड दैट अंडर ना द केप बाउट के सो हम लोग यहां बोले ला केप पाउचेस श्री नाम में से बोले केप बहुतु मुर्गी के बहुतु बस लाख करी से चिरवा के दुकान में कहानी कहां बसला में मुर्गी के पता ना है मुर्गी के बहुतु के कि कहां भैया और इस स्टॉकर्स एफर के पुलिस ब्यूरो में तू जाने से भन ले ली पास करे है जब तू जइयो अल्बिना तो हुआ स्टॉकर एफर लगे हुआ रुकियो तो हुआ पे आदमी लोग बड़का बड़का पाकी मुर्गी किन किन ले जा अल्बिना तो सब लोग के बस लाख कर ले रहा मऊ मुर्गी का पता ना है अब का बोले है असेंबली में एक बार में मुर्गी के बहुतू खोजा है भैया अब बोले हैगा बस लाख नाम ले फर्स्ट मेल ले मेरे पुलिस कंट्रोल पोस्ट होकर एफर में मंगर के असेंबली में बहुत बड़का कृतिक भइल है और बताए गए हैगा जितना चीज सबन बस लाख करी से स्कोथन स्टॉकर्स एफर्स के कंट्रोल पोस्ट में कुछ ना मिलल है सौदा पानी भी ना मिलल है अब काबले बोले मुर्गियन कहां है तो शिशाल मीडिया बोले मुर्गियन कोई के पेट में होई तब बोले कोनो मसाला में बनाई सोई तब बोले कोनो आलू में बनाई सोई कवाई गए ओके बोले स्कोतोन खा खा बोले पेट बड़का बड़का करके जबर जबर सब होई गए दौड़ ना पावे स्कोतो के पीछे चोरन के पीछे बोले यही सब बहुतन शिशाल मीडिया है इफ जो फिल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से और हम भी तो लीवर करे खिलवाड़ तो ला करे ला यार दैट इज कौन जो मीन सर व्हाट वार है दिस मुच वेल ना फॉर बरेंगे तो भाई तो मुर्गी के बहुतू ना मिले ले तहिया बताए गए हैं बोले ट्रांसपेरेंसी से मांगे देना में बोले के पो बाउच से अंदर बदरफन द प्रोजेक्ट और आइंदेक सैन खबलेवन वार सैन से खबलेवन और यहां बतावे कंट्रोल पोस्ट फ्रांस गुयाना के आप लोग जानो है बोले हुआ के फ्रांस गुयाना के देश के सी भले क्लाख्त करी से बरखस बोले मेर के पबाउचस लेफस मिडल अंडर बोस कापन क्वेट राखते मेरे कंट्रोल पोस्ट एनडीपी के पार्लियामेंटल सेल्फाना अफोंसुआ जोन हरदम चिल्लाई चिल्लाई बोले ओई कलरा की बोले बोले जम जोन बोले रहा कि औरत के नाम आके भले के प्रेसिडेंट बोले सब औरत हम लोग चली जा बहरे बोले हम लोग सब कोई चली जाए बहरे तो जितने लोग ट्रेन चलाते बस चलाते आपको वर्क सेवन से तो यहाँ बताते हैं लोग कि अब काम पे न्यूज सुनी से थैंक यू तो बात चीज ये रहा है कि अब कंट्रोलर जो फ्रांस से ही आदमी यात्रा पर मुर्गी बहुत ओहू बोले हम लोग के कुछ ना मिलल है अब सेल्फानो आसन जुआ का बोले है बोले चीजों कहाँ है बोले हैगा खोन बिरखस फलाए थे अन बुरलांड मोगन मिनिमम इन वेलको फिल हिडन से स्टेल दैट द सूरीनाम इज इन अदर बिफोर बी नीदरलैंड रेसन फॉर ऑफ प्रेसिस वेटन वेलको प्रोडक्शन से वेल एंड नीट मोगन इन voeren terwijl vergelijkbare richtlijnen voor reizigers vanuit Frans-Guyana ontbreken daardoor lopen burgers volgens hem de risico onbewust regels te overtreden
तो बोले ओहिक मारे चीज अरे भैया जब असलाख कर ले बाटे दम उतर तो फर्नीत फोर द वार्ड सेंड के पो बाउचर फर्नीत विल द है वेतन आसाम बिना बना डॉक्टर दाद सामलीव रेक्ट हीप ऑफ दुइलखेड एंड वार्स्क्यूड दैट द इंड्रुक मूट वर्डन फोरकोमन दैट द इन बेस्लाग गनोमन गुदरे इन प्रिवे केकंस प्रिवे केकंस बामीना सी पे बनाले भैया द प्लेट द टेवर फॉर अनफंक्शन स्प्रिकमेन बोले बामीना सी पे बनाले भैया एकर बारे में अब जय महेंद्र जोगी का बोले जोगी महेंद्र जोगी भैया दिस किसी ओवर द रिडिस स्टेटस फ्रॉम द कंट्रोल पोस्टन जनरल पावी रेजो एनपीएस के फ्रुक द मिनिस्टर वेलके वेटके ग्रंडसला ब्रनसाइट एंड स्टॉलकर एवं अल्स ग्रैंड पोस्टन वर्डन aangemerkt volgens hem brengt de kwalificatie immers bevoegdheden met zich mee तो मिला अब ती हीरा भी आ गया है और आप भी बड़ा दिन पे आए लो बाटो मिला जी नमस्कार हो वेलकम सुनील दत्त गजरी आपको भी प्यार से स्वागत करते हैं साथ साथ मिला को भी तो हम चलते हैं और आगे को अपना गर्मा गर्म जमजान

आप लोग को हम एक गीत सुना दे। अबे बता भैया, एगो वो उन्हीं में कौन तमाशा भैल सरना में भाई, हाँ और ब्राजील में का भैल है, हम सोचित लोग के गो हॉट वन तरी नाचे नाचे वाला गाना तो हम तरी सुनाई दी, और वो कहाँ हम रखी है वही तो, ओ यहाँ रेगी, ए एगो रेगी है फोन फन हिंदुस्तान है।

और एक हिंदुस्तानी रेगी सॉन्ग आपको हमने सुनाई ही दिया है हमारे मीठा मीठा जनता। तो प्रोग्राम में जुट गया है वो है गीता शिगुलाम, आपको हम हृदय से दिल से बहुत प्यार देते हैं। गीता जी आपको स्वागत भी हम करते हैं यहाँ दरहा शहर से जो सूरीनाम जिससे हमारा प्रोग्राम को फॉलो करते हैं हर हफ्ते की तरह। साथे साथ आ गया है फिर से एक बार वो है अर्चना जी, अर्चना देवी का हरदाम, आपको भी हम बहुत प्यार देते हैं, स्वागत करते हैं प्रोग्राम में अर्चना। तो अर्चना और गीता साथ साथ मेरा अवध हीरा भी है, तो हम चलते हैं तुरंत तुरंत तुरंत चलते भैया। वे बोले रही सूरीनाम देश में क्यूबाना बड़ा ढेर आएंगे भाई, आप लोगों को जितने लोग सूरीनाम में हैं जैसे गीता जी है और वो लोग जो सुना वहां पर सुन रहे हैं, तो बोले बड़ी क्यूबान आएंगे लेकिन औरत भी आएंगे बड़ा ढेर भाई वहां पर। तो आदमी लोन हुआ पर ये मर्दाना है बाकी औरत भी आएंगे हुआ, तब बोले हैं औरत लोन हिया आए सब काम करे भैया, बाकी एक क्यूबान की औरत है। हाँ क्यूबान के औरत का करत रहा उजातरा क्यूबा से मोई मोई लड़की हुआ से लावत रहा, बोले चल चल हम तो लोग के हुआ कांतोरों में काम देवे मोई मोई न कोई फिर भी कर कर पूरी लगाई के लिपस्टिक लगाई के चल तो लोग के हम बहुत मीठा मीठा काम कर मजा लड़कियन के औरतिया लेके आवे नारे मौसी, बस लड़कियन के पासपोर्ट वाले लेवे और ले जाए के बैठा देवे भैया होटल में, ना जा हम लोग जाले फकान से सूते क्लब में भैया नाइट क्लब में हॉसल करवाए भैया सेक्सुअल का काम करवावे है और पैसों ना देवे है, बोले जो पैसा तो के भर के मंगेली पहले वो सब चीजों भर में और वो का बोले पासपोर्ट तो ले ले कि कहीं तू जाए ना पाइए इंतमी देर करे भैया और ना खाली परमारी बहू में छोड़ियन के ले जाए के नाइट के लिए पुआ में धल्ले रहा अर्चना बेनलांत में जहाँ सोना खोदा है भैया सुन ली बाटी हम तो ना गई ली है, बोले हुआ पे भी सबन के नाइट के लिए भय छोड़ियन के ले जाए भैया हुआ पे बैठावे है वन कौन सी आदमी लोन अपन घरे औरत छोड़ थोड़ जा बेनलांत में काम करे औरत ना है भैया तो वही सबके संग है अपन मनोरंजन करे है। और बोले उस सबके भरियो तो सोना से भरियो जो सोनवा खोजियो ना एक टुक्का की कितना पता ना तो के छाई छौड़ियन के भरे के तब तू ओकर संगे जइयो मार। अब बतिया ई है ओमा से कारगो लड़कियन फरार हो गया हो जाए के अनखिफ्त करी से तो सिपाही जाए के अप ऑन द सुख करे बोले मेंशन सो मकल ना खाली को कई नस्मा कल हो भैया हम बोली ला छौड़ी कसमा कल हो की बास लेकर सूरीनाम तक अभी फिनिश वेला के बांध कर ले रही फिनिश वेला अपन को कईन कि पठावे है खियाना खियाना से सूरीनाम एंड फिर सूरीनाम कोमर कोकेन नार यूरोपा दिस इज द रूट नाम लग फन कोकेन दैट हैव द ओवरहेड फन वेनेजुएला बकेन कमा, लेकिन जो छौड़िया मंगावत रहा सबके उ फरार रहा भैया ओकर नाम रोसाना भैया रोसाना रोसाना गुरा पेरेस अलियास दियाना पेल भागला फॉर फ्लुक्त करा तो रोसाना के भैया गायाना में जाए के पकड़ान है। अब देखो चकल छौड़िया के जाए के सबन पकड़ी से गायाना में तो गायाना में जब पकड़ी से रोसाना के तो रोसाना के लीफर कनी से हनीस मनोरत लगे सूरीनाम में भैया ओके पठाई से सूरीनाम के सिपाही के सबन ऊपर हंदक करी से गयाना के ऑथोरिटी तब यहाँ के पीछे ओके काबल ऑफ स्पोरिंग पे कर ले रहा अभी पकड़ाई गए है हमारा रोसाना। तो अब

का बोले हे हिया श्री नाम देश में चकलस करवावत रहा। तो ये बात है हमारी जनता, तो क्षमता अवतार भी आ गया है। तो संत जी आपको स्वागत करते इस ओपन क्लास कनूर फ्रॉम माय मेंस इन श्री नाम एन हियर लाइक दैट यू वंदाग ऑफ माइन एन ऑफ माइन फेसबुक एन ऑनलाइन बैन। संता जी आपको हम भी स्वागत करते हैं संता अवतार। तो जनता हम चलते हैं और आगे के बारे में, श्री नाम ही देश में हम सुचिल हम है, लेकिन हम बोली तरी बैतलान के बतिया भी तो लोग के हम बता दे भैया हम जाएला तरी इंग्लैंड की ओर एक हम भी चला इंग्लैंड ब्रिज। ब्रिज से तो जाने भैया जो आदमी गुजर जा परिवार में तो ओकर राखी मिले हैं और ओकर राखी कुछ दिन अगोरे के परे है। राखी कुरुच अगोरे के परे सुरीनाम देश में जे जइयो के मनासी और पे तो हुआ पे तो बिहान भर जइयो पर राखी बिटोड़ के जइये सरवाई सके है या वैखनासी में, लेकिन यहाँ नीदरलैंड में या यूरोपा में राखी दिरेक ना पइयो ये मुतफ वक्त एंडाम पास करेख माँ बातचीत ई चीज हो रहा है। ये बात हो रहा है क्या इंग्लैंड के बारे में, तो एगो ऑंडर नेमर रहा फर्स्ट ऑंडर नेमर के बातचीत हो भैया ई का कर ले रहा, इधर के माल उधर करत रहा और उधर के माल इधर करत रहा। हाँ ई दूसर के राखी दूसर के मैया के राखी दे दे इस दूसर जात के और बप्पा के राखी दे दे इस दूसर जात के और सब कोई राखी ले ली अपन घर में राखी चलो जान पइयो कि हमार भाई के राखी के हमार माई के राखी केकर राखी है। राखी ले ले आदमी अपन घर में सब धरे रहा स्वागत करत रहा राखी के, लेकिन वो मौत यानी कि ओकर ओकर लैक के राखी बोले ला दी एश फार्स के और वो आस जोन रहा मीन से और वो फरलीदन के आदमी लोग के फैमिली है वो आस इतना मोई धरत रहा, लेकिन जो अंदर नेमर रहा ब्रिज एश फार्स अंदर नेमर रहा वो जितना राखी रहा सब उल्टा पुल्टा कर दे रहा भैया है विसल द आस फॉर ओवरलीडन द बखरूफ सब लेखाम नीत एस्ताल दो नाची फना बस्तंदन भैया चोरी का जो नमी दोनेर करत रहा ओहू चोरा लेवत रहा भैया एगो अक्तम फेर फेर तक यारक ओकर नंबर रॉबर्ट बुश वास एक ना रहेगा गो एट फर्स्ट ऑन द नेमिंग वो इंग्लैंड में है ब्रिस किंगस्टोन में है और वही का नॉर्दर्न फन इंग्लैंड और ओके समन पकड़ी से भैया और बोले इन टोटल सीफरन सेस्तक राखी उल्टा सीधा कर ले रहा। तो गीता बिहारी आपको भी हम स्वागत करते हैं, आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। तो गीता जी आपको भी हम बहुत प्यार देते हैं। तो बताए गए है कि उस सीफरन सेस्तक आदमी के राखी उल्टा सीधा कर ले रहा भैया, तो ई आदमिया भूस के सिपाही पकड़ के ले गए तो अब ई फोर द रेख तर गए ले हिया बताए गए हैं 3000 बवेस तेखन बसलाख सबन करी से 12000 दो की मेंशन फर सामल करी से 800 खतई को फरकलार करी सेगा होफ एक्सपेक्टर जो रहा और बोलेगा 300 आदमी के ई स्लाख ऑफर करी सेगा मार इन वेरकला खैर बोले और ढेर आदमी की स्लाख ऑफर करी सेगा। एगो कंप्लीट खाओस इंग्लैंड में भइल है भैया, मद कने में फोर्स तेल जिकर जिकर धीर बार मरल है एंड एंड खाय शुमल में द आस फन यो धीर बार है। जब तू तोर परिवार के आस है द बीच कि ई हमार परिवार के आस है ओके तू जइयो ना ओके तू जइये सिरवावे पानी में जइयो ओके तू विनती भाव करियो पूजा करियो अपस्केट लियो एंड ब्लैक कि वो कोनो घोड़ा बिलार कुत्ता के भैया दिस इज दिस दिस काम तो नहीं द स्पीड ये तो मेट मेंसेस गफूल त ई भैया के जहल मिलल है और जहल कितना मिलल है मिला 20 बरिस के 20 jaar celstraf op Paise Engeland mee en die man is zelf namelijk 48 jaar. Dus als ik 48 en 20 doet bij elkaar doet dan is het behoorlijk hoog mensen. तब वो बेचारा कानी निकर पाए जहल से कि ना मैं तो जाने खुद खदराक में आदमी 3 क्वार्टे और निकर के भग जा वी वे दाद माँ हमारे काम है बताने को कि आस कितना शुमल भइल है एक हाथ दे ओक केर चखली से मदर वॉस ओक इन अंदर लंत में से दैट वॉस इन अंदर लंत। हाँ तो हमारे जनता ये सब बात है मंद में ये ओफर माख तू ना जान सके का हुए और का ना हुए है।
politie chaos. Politie grijpt in. Ja, nou, dominee straat Suriname, je hè. Dominee straat saban rastua banawe, bhaiya, ha. Dominee straat saban banawe, hè. Khod khat kese banawe, hè. Sipahi hua farkers reikhals kare, leki admi loon. Tu jane hua baat na sune, hè. Tekar baare me sipahi loon. Bole farkers of stopping the sins afsluiting van de dominee straat in ontstaan. Schotelen hoe bij je extra maatregel kan je zeggen. Dat je Suriname deze me baat doet. Chalo yo, bij je alfas na chalo yo. Schotel kan aanwijzing me kario. Nee hoe, boetu paave me khelwaar na kario. Als je paisa hai bij je boetu bereke, te khelwaar karo. Maar dat gaat u wel met andermans lieve spelen. Want die andere probeert goed te rijden. Maar jij, als jij verkeers rijdt, dan heb je die probleem. Chanta, ye sab baat aap log ke aage hum rakh diya hai. Sora baris ke. Tu kitne baris ke? Hum 16 baris ke. Je tu 16 tam sa ganwa tulon jano na hai. Baki hiya baat chiz kuch aur hai mila. 16 yaar ka bhaiya. 5 tal barofing van bronfis. Sora baris ke ladkan je abbe jahe school paap re baap dekho khali bronfis scooter chori kaise sarnaam me sora baris ke london bhaiya naam sab ke choti choti nikal kahan kahan padhi aur is sab ke isko utu pakad ke sab ke sutai se dosto ehi batayla ki bronfis bhi bara jor saban chori kare hai Suriname desh me हमारे प्यारे प्यारे जनता बोले जॉनी तू नाम बता ले सेलेंस्की तोरिया कैसे है और रसलान के तोरिया कैसे है रसलान मतलब न सुरीनाम वाला रसलान ये हैगा दिसवा रसलान हां जो ओरलोखवा हुए है यूक्रेन से उल्टा कोचोर कोतवाल के अब यूक्रेन उल्टे रसलान के दागे भैया Rusland banaise een lamba lamba drone 2000 kilometer fabriek we banaise bhai aur jitna rafinade rahi hai rafinade rahi hai aur kabul Rusland mein sabke dag dag plata kare hai Zelensky Ukraine ke sate sat botian bhi dag ek shuru kari sega un kabul Ukraine ab joon Rusland een van de grootste land waarvoor exporteer van gas en olie ook देश में अब तेल ना मिले आदमी लोग लंबा लंबा रही में खड़ा होई के और तेल जाई के लेवे है भाई तो यहां बतावे यूक्रेन हीफ्ट कमेंट op Merkel doel in Rusland bole het bedrijf wil bedrijf ke ego badka dukaan bhi raha jon khali wapan bechatra online u dukaniyo drone jaye ke dak ke plata kar is Ukraine ke afkhaloman pardakhan me ego web winkel la bhaiya distribution center raha oke sab dak ke Ukraine aur ohu ke plata kar di se hamare janta dus Ukraine bari bari aage ja Russian Finn Netherlands Christ rakhet di in Hengelo se bedrijf Maak. Dekh hier pe bataye gaye hai Hengelo mein Hengelo tulun jane Nederland mein hai aur bataye gaye hai ga hier pe bane kruisraketten in Rusland zijn wrakstukken van Nederlandse kruisraketten in handen gekomen van Russische militairen het zou gaan om Ruta Blok 1 die bedacht en geproduceerd is in Hengelo wat is dit voor bedrijf en hoe ver zijn ze betrokken bij de oorlog in Oekraïne de kruisraketten Nederland banawe Hengelo mee. En ook een wrakpijsje zijn we Rusland mee. Op Rusland chakkar mee Hengelo. Hij kaha. Hengelo to hamlo jane lag. Ja, dat is de grens van Duitsland. Maar het is in Nederland. In Hengelo. Dus laten we hopen dat wij de andere kruisraketten niet van Rusland hier in Nederland krijgen. Dus hamara poa weer gaya. Hey, piari, piari. Aur hamara poa Damyanti bhi aake hamara program mein aur jud gaya hai to poa ji aapko pyar se bahut swagat karte hain to yahan bataye bhaiya khawapan the warning are bhaiya wapan saban wapan leke gal Suriname desh mein roof kare poa ha gal roof kare aja roof kare lagal hua pe ra bira bhaiya lagal chillaye
लगल चिल्लाई इतना चिल्लान जनता हुआ के बीर जग गए कि कौन जी भैया कि चोर के कान बह रहा चोर अपन हक्की पक्की दबाई के और भगल है कुछ ले जाए भी ना पाई से चोरन भैया चोरन कुछ ना ले जाए पाई है यानी कि उसे पिंडम डराई गए एक घंटा हो चुका है दोस्तों इसी प्रोग्राम से अब हम समाप्त करें इसी गीत से जितने लोग हमारा फेसबुक पे है आप सबको बहुत बहुत प्यार देते हैं प्यारी प्यारी मिला अवत हीरा गीता बिहारी गीत संता अवतार सुनील दत्त गजरी किसी के मिस कर दे भैया नाराज

ओके दोस्तों, जिसको हमने यहाँ पर हबड़ा कर दिया है, और अर्चना देवी का हनुमान और रॉय काली रजेश यानी कि बुद्धू भैया, सबके बहुत बहुत प्यार यहाँ से नमस्कार। आने वाला शुक्रवार को हमारा तुम्हारा मुलाकात हो।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 93.5 MHz और नहीं कनाल 8 पर। और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दैट वाज वेल मो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और न मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे।

0: टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तो मुझे क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग ही कि कहते हैं दिल में।

ए हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपके सिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है। कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं. और ये गीत है, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और काश चित्रा का ये सॉन्ग है. और दोस्तों कहते हैं, वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है. दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता. तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता. कि कहते हैं, जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए. किसी ने पूछा, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा, शायद आज नहा कर आई हो. तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है. और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग. आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए.

एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सबरा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आज भी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों, ये यश उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। आप रिव्यू जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है मैं थील फील प्लेजर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज तरफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर स्टेटस कंटोर उर कंटोर 07362247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07362247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एनी तो फरखेत है उनसे क्वालिटी इस आते तो गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूट सिख ऑलवेज लेकर देयर बाय फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके रोसिता बहन जी आप श्रोताओं के समक्ष पेश की। जिस तौर तरीके से रोसिता बहन सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करती आ रही है, यश उम्मीद है कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोसिता बहन जी और आपको भी हमारे फुल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। विवाह संस्कार हो सकता है तो आजकल तो इतवार के भी रविवार के भी विवाह हुए हैं, लेकिन अगर कल हुआ होगा तो आज कंगन भी छूट चुका होगा ना। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। अब परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर ये विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का फिड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। यानी तो फिर खेत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत तुम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ भी तरस का कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड फॉर ऑल हासो डोर ब्रो ऑफ सीज। और हो सकता है कि आप परसों या कल आज कामयाब नहीं हुए हो तो मौरखे स्वेर अंदा है, चिंता की कोई बात नहीं है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा और जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना बंधु, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी आपके कदमों को जल्द जल्द से दौड़ दौड़ कर आकर
चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है, दौलत का यारी है वो तो ओवरऑल क्लियर है। नेवर गिव अप ब्रदर एंड सिस्टर, सो सो लवली लवली एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर एट लिस्टरन। Deze prijs weet maar een full team die er zich zo zwaagt. Een fijne vakantie, geniet ervan. Blijf luisteren naar Fahon Industani Radio. Je gaat het zeker leuk vinden en dat menen we ook. Over hoogste tijd, ja, deze kochorke bij deze jatra per jaar. Hij heet al, aapko bij maar een full team die er zich zoep jatra, fijne vakantie. Tamam leuk, Sunte hij werd links en rechts altijd verteld hoe leuk ze het vinden dat we ons ook op hun vakantieadressen mogen luisteren. Toen abisoneer leuk op uw vakantieadres, mogelijk hè, internet kan leren dwaren op uw tablet, smartphone of laptop. Zo blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation en dat is natuurlijk Hamar Den Haag Sherkar, one and the only Fahon Hindustani Radio, 24 hours at your service, me gudu. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार 1927 कंपोज बाय डेविड कल्याण जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा ना, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए आप लोग गो से तो यहाँ से हम लोग सदियों से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे ना कि हैव टू नाश्ता ऑल टेट लीव, हम इंसान है और सभी को पेड़ पालो पक्षों धीर इधर ही मुतो लीफ है दत्थेफ्टोंस अलर होस्ट परसों लिखे कृष्णा जी गज़ेक्ट हैं। तो इसलिए हम लोग आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहे हैं रेडियो पर और सदा कहते ही रहेंगे कि हैप टू नास्ट औतेज लीफ है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे सरनामी संगीत का, कुछ गाने सरनामी देश का आर्टिस्ट का और कुछ हमारे हॉलैंड देश के आर्टिस्ट फिलिंग नतीलक में सूरीनाम वाटर सैन ए नतीलक अपना देश का संगीत है यारो। और द लास्ट यूच फन सीफ तो आह अली मार न्यू न्यू नंबर्स फन है द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, कुछ शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा साथियों। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रफी साहब

का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है। मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक जबरदस्त कलाकार के आवाज के जरिए। मौसम भी हसीन है, आप सभी भी मेरा साथ दे रहे हैं, तो एक से एक नगमे चुन चुन कर लाया हूँ हमारे कुछ सूरीनाम से आर्टिस्ट है और कुछ फ्रांस आर्टिस्ट है नतीलक ook afgestampt uit Suriname, ook een paar die dagelijks met ons omgaan. Dan bedoel ik Pakistanse zangers, zangeressen, ook uit India, die dagelijks contact met ons hebben. To dosto, zara dil ko thaam lijiye, hamare Suriname desh ka ek jabardast kalakar, international kalakar hai, kafi बार यहाँ देश में आया है, हॉलैंड देश में अपना शोज दिया है और प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को इतने एंटरटेन किए है। एक जबरदस्त कलाकार बोर इन एन म्यूजिकल फैमिली उदित राम, और मैं तो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि इस परिवार में हमारा संगीत का शुरुआत भी हुआ। मिलके सुनते हैं उस्तादों का उस्ताद, द ग्रेट सिंगर फ्रॉम सूरीनाम, द वन एंड ओनली मास्टरो रॉबी उदित राम जी का ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान। जरा अल्फाज पे जरूर ध्यान देना साथियों, सारी दुनिया से नाता।

Shabash, shabash, जबरदस्त कलाकार, इंटरनेशनल कलाकार हमारे सूरीनाम देश का स्वर्गीय उस्ताद रॉबी उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये ओपनिंग सिलेक्शन आज का इस शाम का प्रोग्राम में हुआ। साथियों, स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो देहरादून का तापमान तकरीबन 24 और 25 के दरमियान था। सुबह तो खूब जोर तोर से धूप घाम निकला था, लेकिन अभी शाम को तो एकदम छाई सी छाई छा गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, गर्मी है ना, तो आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए। बिल्कुल नया नया निकाला है हमारे देहा सरकार देश का नौजवान कलाकार जो ईसाइत बेतलांस दूर पे है, The great singer from Holland, शिवम राजाराम जी। एक मैशेप है छोटा वाला, कैसे तूता और सैया से बिछुड़ मिक्स।

शाबाश नौजवान कलाकार हमारे डेन हाग शेर हॉलैंडीज का डिग्री शिवम राजाराम हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे नीख अगस्तस 2026 का ये हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप श्रोताओं के चरणों में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शेयर से और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला बयान आज का इस सरनामी संगीत का प्रोग्राम में एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का उखबोर इन हेल मिशकाल फैमिली से ग्रोट फादर वाज एन ग्रोट टोनील एक्टर एंड एन ग्रोट सांगर एंड ओक एन हेल bekende kapper uit Suriname die zijn bedrijf in Hotel Krasnapolski had en je weet het 3-in-1 Aur Unika Nawaza hai san kleinzoon van Chedi Bhan mai baat kar raha hu ustad ka ustad the young tiger from Suriname Krishwam Chedi ka ye bilkul naya song aa ja rahe ho sanam

जबरदस्त कलाकार हमारे सुरीनाम देश का नौजवान कलाकार कृष्णम छेदी जी के ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे थे। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 2 मिनट बाकी है 5:30 बजने में और आप चुन है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे बैठक गाना सरनामी संगीत का अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली है uit de jaren 70, 80, 90. U kunt gerust zeggen bij Tegana ka ek maha maha ustadin Srimati Manraji Lachmanji ko laate hai unhi ke yaad mein ek ye ho jaye bij Tegana chutney option best by the great great great Manraji Lachmanji। रिश्ते में तो मेरा फुआ लगती थी क्योंकि ये मेरा सगे मौसा जो एक महान गायक था सूरीनाम देश में कितने प्राइसेस जीता था और आई पेंथ का लीड सिंगर गिड़ गिड़ी महाराज पंडित स्वामी प्रसाद साधु के बारे में आप तो सुन चुके, उन्हीं के बहन हैं थी ये। मिलके सुनते एक जबरदस्त सॉन्ग, रेडी, जरा ठुमका भी लगाइए इस पे।

शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का बैठक गाना का उस्तादिन एक दियार 70 80 90 श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी। चार मिनट गुजर चुका है साथियों, 5:30 बजकर तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी और मौत, लीफ एंड डाउट के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये आशा उम्मीद लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे हमेशा की तरह। तो जरा गौर फरमाए, अर्ज किया है हम लोगों का अपना श्री बुद्ध भगवान जी। श्री बुद्धा जी ने कहा है मृत्यु के बारे में साथियों और दर्द के बारे में कि अलवीसन सेंट पंक फॉर पेन एंड फ्रीज इन द डूट फॉर प्लाट्स यू इन हिन सिटुएशन एंड लात हैंड मेट रिस्ट। कहा है स्पिनोसा जी मृत्यु के बारे में यारों की एनफ्रेमेंट्स डेंट आर निट्स मिंडर दान ऑन द डो। फ्रीडरिख फान लुगो ने भी कहा है मृत्यु के बारे में यारों की अनफेक्ट स्वेन एंड एन हीर आर्ट वर्डन एयर्स ना हिन डोड वतवार्ड। का अपना महाज्ञानी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ कहा है मृत्यु और दिन के बारे में यारों की द डोट इज नीट हैट डूफन फन एट लिख्ट मार हैट आउटब्लासन फन द लंप ओमदत द डग इज अनगेब्रोकन। कॉन्फ्यूशियस चीनीज़ फिलोसोफ एट ओल्ड हेट कहा है मृत्यु के बारे में साथियों की वी कैनन हैट लीव नीट हु कैनन वी द डोट दन कैनन। होरातियस ने कहा है मृत्यु और जीवन के बारे में साथियों की बिस्कॉ एल्क डग बिफोर वी आनब्रेक आउस द लास्ट हैट यूर वारोप गै नीट गेहोप्ड हैब्ट साल यू दन एन वेलकम फरासिंग सैन। सेनेका इटालियंस फिलोसोफ एट मिडिल एवन कहा है मृत्यु और जीवन ज्ञान के बारे में यारों की हैट हेल लेवन इज नोडिग ओम टे लेरन लेवन एंड टे लेरन स्टर्वन। पास्कल नेचरकुंडिग आउट फ्रांकरेक कहा है मृत्यु और अनवेटनेड के बारे में यारों की दार द मेंस गेन जेनेसमिडल वेस्टन टेगन द डोड द एलेंडे एंड द अनवेटनेड एंड टोच गेलुकिग विल्ड जेन हैबन से बेडाग एर मार नीट आन टे डेंकन। विलियम मोर ने कहा है भी मृत्यु और बीमारी के बारे में यारों की इंडियन अर्जेन डॉक्टर्स वारन सौदव मिंडर सिक्टस हैबन मार एर्डर डोटहान क्लॉप्ट। एंड लास्ट फन फरमिडाग का है सर थॉमस ब्राउन ने और ये कहा है कुछ मृत्यु कुछ तंदुरुस्ती कुछ भगवान कुछ जीवन और कुछ बीमारियों के बारे में। सर थॉमस ब्राउन ने कहा है साथियों मेंशन दी नीट फर्दर दान द ओपरफ्लक टू कैकन डेंकन दैट गेजोंडहेड एगन आन हैट लीवन इज एन रिख्टन फरवेटन टॉट हिन गेस्टेल अल्स ze ziek zijn मार इक दी वेट aan hoe uiterst fijne draden dat weefsel hangt, verwonder mij dat we niet altijd ziek zijn. En als ik de duizenden poorten zie die tot de dood leiden, dank ik God dat we maar één keer kunnen sterven. साथ ही अभी आप कुछ ज्ञान के बातें सुन रहे थे। यह आशा उम्मीद लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों
सुन सुन कर कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे सुरिनामडिस हॉलैंडिस का आप सुनिए, उनका बिल्कुल नया सॉन्ग है, कुछ महीने हुए है निकाला हुआ। तो ये तो बढ़ता जा रहा है अपने बालापन में, कितना मशहूर हो गया देवानंद ओली, माएस्ट्रो सुजल उमराव, न्यू न्यू न्यू

दमादम, क्या बात है नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश ऑन इंडीज का मशहूर गायक मैस्त्रो सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। 17 मिनट रह गया छे बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक सरनामी संगीत का आप सुन रहे हैं। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन हमारे द लायन ऑफ बैठक गाना देनाशर हॉलैंडीज का उस्ताद का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग। आजकल तो नया मशीनियां चलावे है और बौयार एंड मेट इन ट्रिनिदाद कहता है, बोले हमार मशीनियां। मिलके सुनते हैं जबरदस्त सॉन्ग कंपोज एंड रिटन अरेंज बाय उस्ताद का उस्ताद श्री देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी। एंजॉय, क्योंकि अपने लोग हैं जिसपे हमें गर्व है और होना भी चाहिए।

भाई जी उस्तादो का उस्ताद द लायन ऑफ बेट गाना फ्रॉम हॉलैंड द ग्रेट द विंडर सिंग सिउना जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आमाय रेवन यो वाजी त्रावाजी मेक इन ट्रिनिदाद Blessings, blessings, my boy. Keep up the great and good work. So lobby and blessings. Agla bayan mashur gaane wali hamare Rotterdam shehar se the Chutney Queen. Ek sohar in Chutney style mashur gaane wali Ashni Matadin and all.

Usher the Chutney Queen from Rotterdam, Ashley Matalindi, के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर खौ औ आप सुन रहे थे। 8 मिनट रह गया है साथियों 6 बजने में, तो आज का पहला अध्याय हमारे सरनामी संगीत का आप एक आखिरी बयान सुनेंगे और वो सुनाने वाला है ऑल्सो न्यू फ्रॉम द किंग ऑफ बैठक गाना उस्तादों का उस्ताद श्री संदीप बदलू जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग अ किंग्स लेगेसी वॉल्यूम 1 से निकाला हूं ये अति सुंदर बयान सेक्सी सेल्फी जो कुछ महीने हुए रिलीज हुआ है। एंजॉय कीजिए द ग्रेट ग्रेट सिंगर फ्रॉम हॉलैंड जी से हम सदियों से बहुत ही मानते जानते हैं और कुछ साल हुए हैं ना, जिसे लोग ने यहाँ के कुछ महान महान संगीतकारों ने ज्ञानियों ने इसे वो ताज यानी जो क्रोन होता है द किंग ऑफ बैठक गाना का पहना दिया है। सुत वेलवार थोर मिल्क सुनते हैं सेक्सी सेल्फी बाय संदीप बदलू।

फॉन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 9 augustus 2026 zondagavond ga je Suriname Sangeet Dusra Adhyay aap sunye. 5 minuten verwijderd ho chuka hai 6 bajkar. Wo team ki taraf se aap shrotaon ko ek baar phir se swagatam karyakram mein. Tamam taxi drivers jo karyakram ko bhi sun rahe hain aap sabhi ko phir se ek baar swagatam karyakram mein. And naturally works boys and girls. So so lovely lovely and blessings to all of you. And naturally bedankt voor het luisteren. Jo bhi radio ka kaam hona khas farmai se ho is tihare zaruri khabre denk aan Fahon Hindustani Radio. Kifayat Saste Dam mein hum log aapka jo bhi radio ka sandesh hona aap maat par hum log banakar aur jitne baar aap chahenge bandh ho utne hi baar hum log elan kar denge aur ye bhi Kifayat Saste Dam mein. Main jo sadiyon se aap shrotaon se yahi kehte aa raha hu ki Fahon Hindustani Radio se sasta aur awal pata aap sabhi ko har desh bhar mein nahi milega sathiyo. To aap aazmaa kar to dekh sabhi jankari Beledijnens kantoor uren van maandag tot vrijdag op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2047 en studio Katarka nummer 070-362-2077. Job hier radio kakaam hona, denk aan Fahon Hindustani Radio. Je bent van harte welkom hoor. इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना साथियों, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और हो सके तो हम लोगों के बारे में जरा और जोर तोर से बातें शाते करते रहना, और हो सके तो थोड़ा ढंढोड़ा भी पीट देना ना अनस्कैपियबूरे। Nog geen lid van Fahon Hindustani Radio, तो गुजारिश भी थी, निवेदन किया जा रहा है आप सभी से कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और उनको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Zoals u weet hebben we ook onze eigen karaoke team van Fahon Hindustani Radio natuurlijk, waar heel veel omroepers en omroepsters ook mee zingen. Volg ons op de sociale media en natuurlijk onze collega's op de radio. Dan hoort u zeer zeker binnenkort waar u voor uw live gaan optreden. Want door te oefenen, karwaar he, leader en Sibika Janamana. En onze zati, hemloka. Karaoke team ka sabhapati, leader, ustad, the one and only maestro Chandrasen Ganga, to zarur sunte rahe na. Aur aap bhi jald se jald agar aap member bane to aap bhi hum logo ka jo ye parivar hai chota sa mota sa bante ja raha hai, aap bhi aakar usme shamil ho sakte hain. Sabhi jankari iske bare mein aap tar करें tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag op 070-365-2047. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, the one and the only maestro Johnny Number One. Abhi Fahon Hindustani Radio ka member bane aur ko bhi banaye. Ook u bent van harte welkom hoor. के मुताबिक एक ही दम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का मिस्टल सुरिनाम इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सुरिनाम एंड होलैंड, एक बहुत ही जाना और पहचाना हुआ आवाज आप सुनिए। हम लोग का अपना अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली उस्तादों का उस्ताद श्रीमान अनिल जगरूप जी के, ये नहीं अनिल जगरूप, श्रीमान अनिल सरजू के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए। उनका साथ दे रहा है जबरदस्त गायक हमारे ऑन इंडियस का श्री अरविंद अब्दुल। रे
अरेंजमेंट बाय म्यूजिक डायरेक्टर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो अशोक अयोध्या इन हवाओं में मैशअप एंजॉय द म्यूजिक साथियों।

0: familie, de one and only maestro, Umar Wahid Hussein, que é Babuti Jabardast, mazedar song, aap sun rahe the. अठारह मिनट गुजर चुका है छे बजकर साथियों और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का और दूसरा अध्याय में मिस्ताव कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक अगला बयान आप सुनिए एक जबरदस्त सॉन्ग है एवरग्रीन सॉन्ग vele malen nagespeeld op alle soorten stijlen, beter chutney, hip-hop, R&B. En een hele slimme jongeman heeft dit al met AI technology, dus kunstmatige intelligentie, ook dit nummer weer heel mooi gecomponeerd en op YouTube gezet natuurlijk. En hij noemt het Shole Oxygen Mix, DJ Aira का बनाया हुआ ये इतनी सुंदर धुन है बना था लेकिन इन न्यू यशिया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे AI technology
1: tonight we celebrate friendship and joy raise your hands feel the beat Feel the moment. Let's make this festival brighter together. DJ Era is here.

एकदम बाय शाबाश शाबाश शाबाश रूपाद्री फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी द स्टार्स रूपा हिलावे कर ही यौवा मशहूर गायक फ्रॉम द बैंड द स्टार्स का लीड सिंगर रोहित छेरी जी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जो रिलीज किया गया था इन मई। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो है जोर तोर से आप साप्ताहिक प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे सूरीनाम और हॉलैंड का म्यूजिक सरनामी संगीत। एक मिनट गुजर चुका है साथियों 6:30 तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए न्यू यश लेट गेयर। जी ने और अर्ज क्या है कौन है जिसमें कमी नहीं होती, कौन है दुनिया में जिसमें कोई कमी नहीं होती, आसमान के पास भी तो जमीन नहीं होती, तो अपने कमियों पर आप शर्मिंदा मत होना। इधर ही खबरी के साथियों पूछता है मोहब्बत से कि क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्या इश्क हो गया था शिद्दत से, मुझे तजुर्बा है, मुझे तो तजुर्बा है, तभी कहता हूं मौत अच्छी है मोहब्बत से। एक बात बोलूं, हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर ये नहीं सोचते कि आज जिसका दिल दुखाया है वो सोया भी होगा या नहीं। थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात रख, कोई ना सुने तो ऊंची अपनी आवाज भी रख। ये खुद गर्जों की दुनिया है साथियों, ये तो खुद गर्जों की दुनिया है साथियों, सबको अपनी पड़ी है, तेरा कोई नहीं रखेगा, तेरा कोई नहीं रखेगा, तो खुद अपना ख्याल रख। गुलाब का कोई भी रंग रख लिया जाए, मगर पहचाना खुशबू से ही जाता है ना, गुलाब लाल हो पीला हो या ग्रीन हो, नहीं उसके तो खुशबू से पहचाना जाता है ना। इंसान भी वैसे ही है बंधु, इसका कोई भी रंग हो रूप हो जात हो, मगर पहचाना अपने अखलाक से ही जाता है, क्योंकि कर्म से बदूत है। दोस्त हाउडिंग एटीट्यूड।

English, we say, move on, love someone else. But in shayari we say, jo ek baar dil mein bas jaye, uska khayal mitaya nahi jata. Jo saanson mein mehak jaye, use bhulaya nahi jata. Log kehte hai mohabbat dobara bhi ho jati hai. Par jo dobara ho jaye, use mohabbat kahan nahi jata. था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। साथियों, तो आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए जो मैं स्टीफन 20 जुलाई को साम मेथ म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर मैस्ट्रो अशोक अयोध्या के साथ मिलकर बनाया और रिलीज किया। और ये भी महान फनकार द ग्रेट दादा हेमंत कुमार के याद में सुरेंद्र भगवान दीन यानी कि मेरे ही आवाज में आप सुनिए या दिल के सुनो दुनिया वालों। रे अरेंजमेंट बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या।

हूँ हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नेगे ऑगस्टस सोमदागावंत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमारे सरिनामी संगीत का आप सुन चुके हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को का सुनने के लिए। टीम की तरफ से आप श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। की तरफ देखता हूं तो पूरे सात का वक्त हो चुका है। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एन अतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बियम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एन अतिलक बदंत फॉर हेट लुस्टरन। भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, थैंक अनफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सिस्टम डाउन सर्विस ग्रांट योर क्वालिटी स्टार्ट बाय ऑन्स ऑफ द एस्ट प्लांट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करो अपने उसी तक ग्रीवेंसेस तक 2024 तक। कंटोर का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर है 06 20 77 पर आप तार करें van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren। जो भी रेडियो का काम होना, denk aan Fahun Hindustani Radio। U bent van harte welkom। इसी तरह हम लोग के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना, hats off to all of you। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग है तब हम लोग भी रहेगा ना। बेंटिनो खेलेट फनफा हुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन हुए हैं या मेरा यार है वो एक कराओके टीम die opgeleid wordt door onze eerwaarde broeder en the one and the only Ostadoka Ostad maestro Chandrasen Gangaji die zelf ook jaren in de muziek heeft gezeten achter de drums, achter de microfoon en ook achter een saxofoon, dus allrounder. Aur to zarur hum logo ko follow karte rehna omroepers social medias, dan city of horti zeer zeker heel binnenkort waar we live voor u gaan optreden. En dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं ना, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में आप सभी जानकारी को प्राप्त करें बेल तेडेंस कंटोर उर ओपनर सीफटक ब्रिफेंसेस तक 2247 dan wordt u direct door verbonden naar onze teamleider Don and Only Maestro Johnny Number One। तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। वरा के मुताबिक कुछ नए नगमे आप सुनिए और अगर आर रहमान शाकिरा के साथ मिल जाए और वो भी दौर आई टेक्नोलॉजी, तो ये आप सुनने को पाते हैं। द डेजर्ट्स मीट्स द ओशियन एपिक लैटिन इंडियन सॉन्ग 2026 शाकिरा मीट रहमान।

Desert meets the ocean when Shakira meet Ava Rahman with AI technology. क्या बात है? 10 मिनट व्यतीत हो चुका है, 7:07 साथियों, और आप चुन हैं आप ही का मनचाह रेडियो स्टेशन पर, हमारे जनहाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तबलाइस रुफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन FM.NL पर आप सुन सकते हो और चून हो सकते हैं। और आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो चून हो। शाहीबा मशहूर गाने वाली जैसलीन रॉयल का गाया हुआ ये अति सुंदर बयान साथ दे रहा इस जमाने का मशहूर गायक स्टेबिन बेन। संगीत वो खुद कंपोज किया है ये नगमा को जैसलीन रॉयल, और साथ दिया है अरेंजर सिद्धार्थ अन भवर। गाने लिखे प्रिया शरया अन अदिया शर्मा। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम साहिबा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग साहिबा आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और ये भी जैस्लिन रॉयल के आवाज में साथ दे रहा था स्टेबिन बिन। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, जुन जरा तुझे भुला दिया, ये सुनाने वाले हैं आप सभी को मशहूर गाने वाला इस जमाने का माएस्ट्रो शान, और साथ दे रही है उसका श्रुति पाठक, म्यूजिक बाय अभिजीत भगानी, अभिजीत वघानी होना चाहिए। मिलकर सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

tiful zona pe shrutau ke seva me pesh kiya gaya dikha jaye to sunane wala tha aap sabhi ko the tiger of india kumar sanu aur saath de rahi thi mashhoor gaane wali aid the yaar 80 90 sadhana sargam music tha annu malik ji ka aur kya dance kiya is gaane par mahan kalakar the great आयुष्मान खुराना जी। 22 मिनट गुजर चुका है, 7 बजकर और बड़का भैया श्री चंद्रशयन गंगा भी उपस्थित हो गया है स्टूडियो में हमारे बात आप सभी को सेवा करने के लिए। तो जरूर इन दोनों का प्रोग्राम हमारे बात आप सुनते रहना। फॉर ऑल आज यू फ्रॉम आवर लीडर होडन कुंत ग्राग ook een nummer ook aanvragen in hun programma, wat die lang niet heb gehoord hoor. Dat doen ze met heel veel plezier voor u. Agla bayan ke taraf lekar chalte hain aap sabhi ko. Aur dekha jaye to ye kuch pilu isk sufiana aap sabhi suniye. Coke studio mein banaya gaya hai ye beautiful song T-Series Mix Tape Neha Kakkar Sri Rama Milke sunte hai ye beautiful song jo kuch din hue hai release kiya gaya hai saath de rahi hai Neha ke Sri Rama Chandra music by once again maestro Abhijit Wakhani

क्या बात है सुबहा की, लाली है इश्क, पीलू इश्क सुफियाना ऑफ सेंट नेहा कक्कर्स स्टाइल। और इस देखा जाए तो साथ दे रही थी नेहा जी का श्री रामा चंद्रा, म्यूजिक बाय अभिजीत वघानी, और आप द रेस्ट तो सुन चुके। 8:30 हो गया है साथियों। तो अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, जरा दिल को हिलाए के स्टंटवा धर लिए। वक्त ये दो आवाजें हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो हिल अपर्थ है। मैं बात कर रहा हूँ महान गायक माएस्ट्रो पापों और द ग्रेट मलकाय हुस्न मलकाय संगीत मधुबंती बख्शी, ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान को सजाए हैं, गाए हैं और कॉम्पोजिंग में भी दोनों ने मिलके काम किया है। म्यूजिक सुपरवाइजर्स आहान शाह जी के साथ शमीर तंदन जी का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल धुन, और क्या आवाजें हैं, जरा आवाजें पे और लफ्जों पर जरूर ध्यान देना। एख्त एख्त अपार्त स्टेम ओम ये जिसमें तूने के पापों फुर्त एस होर द मैं खुद वो धागे वाला जो गनवा रहा। ओ माय गुडनेस व्हाट इन स्टेम एंड नन दीफान मधुबंती बख्शी ऑफ रात मैं खुद, क्या आवाजें है स्पेशल आप सभी सुनने वालों के नाम आज की रात। और ये मोह मोह के धागे रेनर्थ इडिस्टेम एंड न्यू इनहेल न्यू नंबर, वही दोनों आवाजें टुगेदर, एंजॉय इट।

Ja, maar hey, kort, maar heel krachtig. Ik wou dat het longelen wat langer duurde. Hè? Wat een mooie stemmen zijn dat. Agla, bayan, zara, dilwa ko bhi hila liye ek baar fir. Ab main lane wala hoon aap sabhi ki khidmat mein mashhoor gaane wali is zamane ki sunche ji ko aur ganja wala ko. लेकिन उससे पहले कुछ आखिरी शेर सजाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में. अर्ज किया है साथियों की आज जरूरत है जिसकी वो पास नहीं, अब उनके दिल में वो एहसास नहीं है, तड़पते हैं दो पल बात करने को, शायद अब वक्त हमारे लिए उनके पास नहीं है. ये भी होता है यारो मोहब्बत में. नजर से इशारे और रुख पे हिजाब, नजर पे इशारे और रुख पे हिजाब होता है, थोड़ा थोड़ा तो हर कोई खराब होता है. अर्ज किया है तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहां से लाऊं, मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहां से लाओ. दुआ मांगो खुदा से भाई. मोहब्बत क्या है समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा, मिल जाए तो जन्नत. What a definition from मोहब्बत शेख. वाओ. ओए पागल, तुमसे लड़ाई होने के बाद गुस्सा तो बहुत आता है, तुमसे लड़ाई होने के बाद गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सोचता ये है तुझसे बात किए बिना रहा भी नहीं जाता. वही तो सच्चा मोहब्बत है ना. आखिरी शेर साथियों, बोलने में सेकंड लगता है, बोलने में तो सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लग जाता है, साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है. नखे बोलने में सेकंड लगता है, प्रात है पियन सिकॉन्द नोडक, सोचने में म्यूनिट लगता है, आज मुद्दें के पिमारन म्यूनिट नोडक, समझने में दिन लगता है, हम तो बखरई पे पियन तख नोडक, और साबित करने में हम तो बवेस पूरी जिंदगी लग जाती है. मुझे ये हेल लीफ लांदर फॉर वर्क क्या बात है, हम इमान इट्स तो बवेस दिस बाय फॉर विच लिफ्ट. ये था कुछ आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन जो मैं वादा किया हूं वो तो निभाता हूं. सुंच और गांजा वाला सुनिधि चौहान और गांजा वाला जी का ये सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी भागम भैंग भैंग. ओके भागम भाग. म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती जी के साज है और अल्फाज़े है द ग्रेट राइटर लिरिक्स मास्टर द वन एंड द ओनली माएस्ट्रो समीर तेरे बिन.

Tere bin, beautiful song, wonderful song, monsieur Ganewala uit de jaren 90. De one and only Kunal Ganjawala staat de Rahiti Sunidhi Chauhan aur sangeetkar Pritam Da Chakravarti ke banaya hua ye meetha dhun aap suna. अगला बयान एक लाइव रिकॉर्डिंग है और वो भी महान जबरदस्त गायक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का विनोद कुमार का छोटा भाई रूप कुमार राठौड़ जी को लाते हैं प्रोग्राम में और उनका ये सुपर हिट सॉन्ग आप सुनिए. लाइव रिकॉर्डिंग है और दिखा जाए गाने का बोल तो चलूं. From the movie Border.

0: Thank you.
1: Beautiful song, live recording for Roop Kumar Rathod from the movie Border. Aur itna haseen bayan jo live musician ke saath wo Bharat mein जबरदस्त कॉन्सर्ट दिया था जो काफी लोग लाइव को देख रहा था और सुन रहे थे और उसी कॉन्सर्ट में से ये अपना मैं चुनकर आप सभी को सुनाया। धीरे धीरे वक्त भी करीब रहा है साथियों, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। इट्स अ कॉफर्ड सॉन्ग फ्रॉम किशोर दा और कॉफर्ड क्या है हमारे ख्याल से इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एट द फिल्म कुदरत, किशोर दा का गाया हुआ एवरग्रीन सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना एंड कॉफर्ट डोर द क्वीन ऑफ मेलोडी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का और वो भी इस जमाने का द ग्रेट श्रेया घोषाल जी। और देखा जाए तो ये सॉन्ग को रिक्रिएट किया है राज आशु जी, म्यूजिक प्रोड्यूसर मास्टर किया है क्या बात है महान संगीतकार आदित्य देव जी ने और विजय दयाल जी के स्टूडियो में ये लिया गया है। तो मिल के सुनते हैं, जरा दिल को थाम लीजिए।

0: Sepia.
1: What a great singer, the queen of melody, इस जमाने के हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का कॉफर्ड बाय श्रेया घोषाल हमें तुमसे प्यार फ्रॉम द मूवी कुदरत और सीरियल सोमदोर लता जी एंड किशोर दा। साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये याशामीद लेकर घर को जा रहा हूं क्योंकि यही तक था आज का हमारे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये याशामीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर कुदरत जिंदगी ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूं कुछ फरमाइश से लेकर और कुछ पुराने नगमे। तो हमें आप सभी इजाजत दें, हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्री चंद्र सेन गंगा जी और उनका साथ देने वाला है भाई यूसेफ जी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना और जाते जाते तो कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ। आज भी दादा हेमंत कुमार के याद में कुछ गुनगुनाता हूँ।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इजहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरा वादा दर भर गीत ब्रोकन हार सॉन्ग।

जीते हों किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है www.fawnfm.nl पर, वीफी रेडियो है इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चला है 8:11 ऊपर अख्त, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देनहाग शहर से। जो बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले कार्यक्रम आप सुन रहे थे भैया बीरबल से, भैया सुरेन भगवान दीन जी से। भैया सुरेन बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। आपको शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं अपने तरफ से, और भैया यूसुफ जी मेरे सामने बैठा हुआ उनकी तरफ से। भैया सुरेन बीरबल भगवान दीन आपको शुभ रात्रि। सोंदखनी को खुश्त से 9 तारीख अगस्त हो गया, आप तत्पर हैं। जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में होंगे, सुबह होगी, शाम होगा या रात होगा, बहरहाल आप सबको एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा होलान देनहाग शहर से।

भैया ये सब कैसे समाचार है अपना आवाज सुना दे ब्रूर। क्या कर रहे आज तू ब्रूर इतना गर्मी में? ओके मोई मोई मसलक। अरे तो हम लोग के कोलेग के पास गए भैया, अनिल के पास गए ले नहीं मोई। अच्छा भले तो हो जाए डांग ओके भैया यो डंक यू। तो लीजिए पहला सिलेक्शन में पेश कर रहे हैं यहाँ से, जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को और तार ढूंढ रहे होंगे आपने किचन में या रसोई घर में छोड़ दिए होंगे या बेदी पर स्प्रे के नीचे छोड़ दिए होंगे, तो अगर ये दूसरा तार होगा तार करके देख सकते हैं कि तुम्हारा तार गुम कहाँ हो गया, क्योंकि ये भी होता है। जैसे एयर फायरिंग दी मैन आलते मेमाक। तो लीजिए पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं इस तरह से मदन मोहन के साज पर।

0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस वक्त लाइन पर कोई है, लेकिन उससे पहले मेरे मोबाइल पर किसी ने तार की है। चलो मोबाइल को ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा पता है ये घर पर नहीं है, लेकिन भैया की दिली ख्वाहिश है हमें मोबाइल पर तार की। और भैया चांद नमस्कार।
1: नमस्कार भाई,
0: कैसे समाचार है? बस चले धीरे धीरे, ऊपर वाले के दया से आप लोग की कृपा से चले ब्रूर।
1: अरे रेडियो सुनीलास,
0: हाँ ये फालतू बीच है वेखमा। हेलो, हाँ हाँ
1: हाँ
0: ओके। तू एफ आप एगो एगो एगो दूसर स्थान ले ले चान, एगो दूसर स्थान ले ले तो सही था।
1: अच्छा
0: हाँ सुना है अब हाँ। अच्छा भैया चंद कौन गाना मांगा तो ले सुने।
1: बहारों के सच,
0: बहारों ने किए सजदे, सही कर।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बहारों ने
1: टुनाइट
0: सजदे, चांद रघुनाथ रेखर ब्रूर। हाँ अच्छा, तुम तो के बहुत स्टोर ना कर, मत नहीं वैकफाल हो जाए एनान फाल दंग की वेल दचे वो कानून से खुदख्त एन आन गीत गजल है खुदख्त एन आन दिसों दख है खुदख्त।
1: या बहुत धन्यवाद आपका भाई।
0: अच्छा चान या यो
1: अच्छा
0: या फेन दख फेर देर खिस, हाँ और खिसला के खुरूत।
1: अच्छा
0: ओके ब्रोर, ऐसे ही रही फेन आफन।
1: अच्छा
0: नमस्ते।
1: अच्छा राम,
0: जय सी राम। अच्छा ये था भैया चांद रघुनाथ, जो तार की घर पर नहीं था, लेकिन इसकी दिल ख्वाहिश थी कि तार मार के एक गीत मांगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमेशा की तरह। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है, दूसरा लाइन पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। खुद ना हुन
2: भाई,
0: खुद ना हुन सीला, कैसे रहले? चले धीरे धीरे
2: yeah.
0: अच्छा मयूरस्त खान
2: yeah.
0: ये निद्रुक माँ का
2: yeah.
0: यो सब तो रखती न गो ओ ना तू मंगिया है यो सब खती है वक्त इच्छा सिला इन मोमेंट। हाँ सिला हम तो क्या आज ना मुई लग कर तू बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने तू?
2: फिल्म वक्त
0: हाँ,
2: चेहरे पे खुशी छा जाती है,
0: चेहरे पे
3: आदमी
0: खुशी छा जाती है रीखल।
2: ओके
0: या सिला या योग दंग की वेल रुस्त खान या एंड तो द फॉल हुंद केयर फैना आप तक सिला। ये थी सिला जी माशुका इपन बुरख के रहने वाली, और इस सिला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। भैया योस कोई है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत।
4: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और नमस्कार शुक्रिया का।
0: वालेकुम अस्सलाम भैया नमस्कार, कैसे समाचार है?
4: चले चले चले, कैसे सबकी खैरियत?
0: बस चले धीरे धीरे, क्यों कोई जाए हाँ। मोहम्मद दनहा के रहने वाला भैया मोहम्मद, अल्फाज पहले बता दे कौन गाना मांगा तो सुने आज के।
4: गाना है फिल्म अग्नि प्रेमी हेगा, और गीत है रोशनी चांद से होती है, गाय से बप्पी लहरी और कविता कृष्णा मूर्ति।
0: रोशनी
4: चांद से होती है,
0: चांद से होती है सितारों से नहीं रीखल। अच्छा बताओ कुछ धल्ले हैं
4: ना? एगो छोटा वाल माई ई गनवा के हम एगो छोटा वाल धल्ली होकर
0: मोई मोई गो है।
4: रोशनी ये चांद से होती है, सितारों से नहीं, प्यार सिर्फ एक से होता है, हजारों से नहीं।
0: अरे वाह क्या बात है।
4: ये छोटा वाल पहली
0: हाँ ना मोई प्राप्त रीखल मोई कर ले गनवा के एगो तू कविता बना दे ले तो
4: राजू फाखन That is start of us of Malays.
0: Thank you well. Hey, okay. Brother Mohammed, thank you well. Okay. Show fijn avond.
4: Yeah, ook zelf daar.
0: Heel veel luisterplezier en tot de volgende.
4: Heel veel succes met het programma.
0: Ha, thanks.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Namaskar bhaiya. ये था भैया मोहम्मद देन हाँ के रहने वाला कोई है अच्छा इस वक्त कोई नहीं आप तार कर सकते हैं 9 65 63 67 67 या तो 3 65 67 67 या तो 3 62 67 47 यो सब ब्रिल के नीचे समके ताक दिए इसके गंगा तो का बोला है होता है गर्म है तो मखुद चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं और वो ये है इस तरह से चलो हम आपको सुनाते हैं

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: फिल्म धूल का फूल में से निकाले हैं आशा जी और महेंद्र कपूर जी, मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को नल से इवन तक दरी फाइफन सस्त तक तुन तुन तक सेफन फेर तक, या तो नल से इवन तक दरी तुन सस्त तक तुन तक सेफन सेफन तक। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और तुरंत हम शुरू कर दें यहाँ से गीत गसर का कार्यक्रम में, देखते हैं भैया जी नहीं चलो एक गीत पहले आप चला देते हैं उसके बाद लीजिए यह शानदार गीत सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

मैं नाचू तू बंसी बजा एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आपको सुनाए हैं। देखते हैं फिल्म जाग उठा इंसान, निगती फिरन तख्त 1984 का ये फिल्म है जाग उठा इंसान। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत के गजल के कार्यक्रम में। तो चलिए पहले नंबर में पेश करते हैं अल्फन ऑन द रेन, अल्फन ऑन द रेन के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला के लिए शुभकामना के साथ। चलिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, भैया चांद रघुनाथ और खिसला जी के लिए।

माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला, आपको सुनाए हैं गीत गजल के कार्यक्रम में, जबकि सोन रखनी को खुश से अल्फनंद रैन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ, उनकी धर्म पत्नी खिसला भैया चांद ने मांगे हैं खिसला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए फोन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भैया चांद और खिसला जी को, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है शीला जी के लिए, इपन ब्यूरो के रहने वाली माशुका शीला जी के लिए हम चला रहे हैं और शीला जी ये गीत मांग रही है अपने माशुक के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए, एक शुभ रात्रि शुभकामना पेश करते हुए प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। चलिए शीला जी की तरफ से ये शानदार गीत हम चला रहे हैं और देखते हैं, जी हाँ, फिल्म वक्त में से निकाल कर, हाँ चलिए ये शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से माशुक शीला जी की तरफ से, माशुका शीला जी की तरफ से माशुक यूसुफ के लिए।

चेहरे पे खुशी आ जाती है। और ये शानदार गीत आशा जी ने सुनाए गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि इबन बेरख के रहने वाली माशुका सीला जी ने ये गीत मांगे हैं अपने माशुक यूसुफ के लिए, शुभकामना के साथ, शिवरात्रि प्रेम प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत चलाया गया। सीला जी, उम्मीद है गीत आपको गीत अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत का जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों मिल के चलाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, और वो है दनहा के रहने वाले भैया मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों को मिल गया है, तो हम चलो चलाते हैं। नीख निशा से नीख तक का ये गीत है, और भैया मोहम्मद ये गीत मांग रहा है, यानी मांगे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और सुनने वाले श्रोताओं के लिए। तो लीजिए, सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद देते हुए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देते हुए भैया मोहम्मद के लिए ये गीत मैं चला रहा हूँ। भैया मोहम्मद, इस तरह से आ रहा है।

प्यार एक से होता है हजारों से नहीं, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं बप्पी लहरी के साज पर, बप्पी लहरी खुद कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ, फिल्म अग्नि प्रेम में से निकाल कर निकली 1996 का ये फिल्म है हमने पेश की। और ये पेश करने वाला था, करवाने वाला था, दन्हा के रहने वाला श्रीमान मोहम्मद जी, श्रीमान मोहम्मद जी के लिए ये शानदार गीत पेश हुआ। भैया मोहम्मद, उम्मीद गीत आपको अच्छा लगा होगा। और उन्होंने ये गीत मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और ख़ास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना के साथ। भैया मोहम्मद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, गीत गज़ल के कार्यक्रम में आपने भाग लिए। चलिए, जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तार इस वक्त फ्री है, तो हम चलिए एक अनासर शॉइस चलाते हैं और वो ये है।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: www.vahonfm.nl पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है. गीत गजल के कार्यक्रम जारी है और देखते हैं लाइन पर कोई है. फोन हिंदुस्तानी रादी खुदनाफंद
3: खुदनाफंद में गंगा इस तरह में मिला
2: खुदनाफंद में फ्रॉम मिला. कैसे रही ले फ्रॉम मिला?
3: अच्छा रह ली. आप कैसे?
2: बस चले धीरे धीरे एक एक गुजार है काल भैया मंसूर के.
3: वो भी अच्छा है यार.
2: वो तब मुई इस बाल थोड़ो है कि वो है और इस फकांसी है. तो भैया मंसूर के बड़ा तीखा फॉलोअर इस आइट फुटबॉल बना रहे इस तीखा फॉलोअर
3: या मैं उसे लोग वैख है मैंने गंगा वहाँ ओके
2: नहीं प्रिमाइस हो
3: या तो स्मॉल वेयर तो
2: प्राप्त मुफ्रॉम मिला. बताओ कौन गाना मांगत रहे उसे?
3: फाफेलम दास्ता. तेरी नैनो में प्रीत है.
2: तेरी नैनो में प्रीत है. ओके
3: अरे प्लीज दिस फॉर ऑन्स बाइड
2: ओके
3: अंत दिस नाम सो वार ओक 56 jaar getrouwd.
2: ओके फन हार्ट गेफेलिसिटेट एंड व्हाट वाज दैट या व्हाट वाज दैट
3: दैट वाज इन 3 augustus.
2: Oh, hoe dat is pas vorige week.
3: Ja.
2: Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
2: Ja. Ja. En dan zal ik dit voor jullie afdraaien. Is goed. Ja. Oh, kun je Shairi Dhallim voor Mila?
3: Nee, ik had ook bezoek.
2: Oké. Nee, prima. Ja. Next time, geef niet.
3: Ja, dan zal ik iets zoeken.
2: Oké. Mevrouw Mila, voor de rest, ook een bijzonderheden?
3: Nou, is een bijzonderheden.
2: Oké, fijne dag dan. Fijne avond, heel veel luisterplezier.
3: Ja, u ook en bedankt.
2: Ja, dank u wel. En nogmaals jullie beiden van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dank je.
2: Fijne avond, ja. Dag.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Ye thi Mila ji, Soetermeer, keer rehne wali. तो लीजिए अगला गीत. हाँ पहले इसे बंद कर दूँ और गीत ढार दूँ आपके लिए. तो लीजिए इस तरह से आ रहा है और वो है मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ. माशूक यूसुफ इबन बेरक के रहने वाला है. वो गीत मांग रहा है अपने माशूक आज जो इबन बेरक में बैठी हुई है प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ. श्रीमान यूसुफ ये गीत मांग रहा है अपने माशूक के लिए. तो लीजिए माशूक की तरफ से माशूक के लिए इस तरह से आ रहा है.

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक दिल सौ साने में से निकाले हैं 1963 का ये गीत, नेकेंद्रीय शस्त्र का ये गीत और सुनाया गया गीत गजल के कार्यक्रम में। जबकि मेरे सामने बैठा हुआ है माशुक यूसुफ और उन्होंने मांगे हैं ये गीत अपने माशुका के लिए जो इपिन बर्फ में बैठी हुई है। शुभकामना के साथ, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये शानदार गीत पेश किया गया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। भैया यूसुफ और शीला जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए इस तरह से आशा जी है।

वाह क्या बात है, नौशाद अली के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ रात्रि के कार्यक्रम में हमने पेश की। और देखते हैं आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म गंवार में से निकाल कर नौशाद अली के साथ साज पर ये इसे मैंने कहा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए मीला जी और भैया मंसूर के लिए दोनों के विवाह संस्कार के जयंती जो था त्वस के बहुत बहुत बधाई हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। और लीजिए आपकी मांगी हुई गीत मैं पेश कर रहा हूँ मीला की तरफ से मंसूर जी के लिए और जनाब मंसूर जी की तरफ से मीला के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत और इश्क के साथ। चलो ये गीत है

हम तेरी मेरी जीत है फिल्म दास्तान में से निकाले हैं नेकी थी फिफ्थ का ये गीत। जी हाँ, नौशाद अली के साज पर सुरैया की आवाज़ में और पेश हुआ सूतरमेर के रहने वाली मीला जी की तरफ से भैया मंसूर के लिए, मंसूर जी की तरफ से मीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपके बहुत बहुत विवाह संस्कार की जयंती बहुत बहुत बधाई हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। घड़ी पे देखो तो करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चला है 9:23 ऊपर नहीं और यह लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा देनहाग शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

0: ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साथ पर 1966 का ये गीत, निखित सस्तक का ये गीत, फिल्म दिल ने फिर याद किया हमें से, ये है, ये भी एक फेवरेट गाना है मेरा, हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हो। चलिए अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ और वो है रोटरडम। ओ कोई है लाइन पर? अच्छा एक मिनट, लाइन पर कोई है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत
1: खुदनाफंत तो दिया
0: खुद मोर खुदनाफंत भैया कैसे नहीं ले हालस खुद भैया
1: या एक और दो खुद मोर से
0: हाँ
2: वो सके
0: हाँ मत हम सोची का भैल भैया नफ्स बैल करे तुम सोची आओ खुद मोर
1: चौक के ले
0: हाँ एनुस भैया
1: बैल करती या
0: हालस खुद
1: आलस कुछ मत गंगा
0: चले धीरे धीरे ऊपर वाला के दया से तू लोग कृपा से तू लोग के आशीर्वाद से चले
1: या तू लोग मोर
0: तो अपन खेत उत में काम कर चुके भैया
1: ना बोल तू इतना तो हमें तब पेड़ के तक टूट गए गो
0: पेड़ के तक टूट गए हैं
1: पेड़वा इतना ढेर लथरो कि ओकर तकवा टूट के ऊ होइ है तब ताकीला हमरे एंड काम ना है देखि लटक कर मैं कछिरो एक बड़ी गली तुरक पड़ल
0: कौन चीज लटक गया रहा दौर खबे फंदी पैर
1: बहुत ढेर मान
0: ओ तो कहे दना के बाजार में बेच देवे
1: दना के भाई दना के आदमी जूता है बकड़वन उसे बोलने मोइकवा ले ले और तू जा घर है तो दिख सड़ा देवे ना ना फर्दर मोई हमार पैर कर ले ताई नहीं मैं कर ले काम अब ना है उतना अजलवाम झूली लता ऑन द दस दस
0: दिया भैया कोनो कहा हो तो वो धल ले ये नो खान रस्प्रे एक बार तो फिर जार खले
1: कहावत बोल तो
0: कुछ बोले
1: अरे कुछ कहावत है
0: निकले रहे
1: बकरो बकरो बोले हैं मैं तो द्रुपल वातर फिर वक्त है मैं तो द्रुपल वातर वक्त है मैं अमर वर्तो फॉल मैं तो द्रुपल वातर तो
0: ओ यहाँ न दिल दिस फॉल फॉल खुद द्रुपल द अमर वर्तो फॉल
1: पानी में बोले बूंद बूंद से
0: बूंद बूंद से घड़ा भर है
1: हाँ,
0: हाँ,
1: तो,
0: हाँ, नहीं मोई बड़ा दिन पसंद लिए बुलाई गरी
1: घड़ा कौन सी है
0: घड़ा इस क्राइक
1: ओ घड़ा
0: घड़ा किंग घड़ा मां घड़ा हड़ा हड़ा फाइन राइट एंड रॉन्ग
1: घड़ा घड़ा ओके
0: हाँ ओके बोले
1: बूंद बूंद से बट्टी भर जाए बकड़ा बोले और बूंद बूंद से घड़ा भरे ओके
0: यस अच्छा भैया बताओ कौन सी मांगते ले सुने
1: तो एगो गटैया में केकर
0: गाना कहीं हाथ पे केकर ने से निकाल ने गाना गा दे
1: ना मांग सु ओ गुनवाए जीने के लिए अंदाज आए कितने हंसी है जिंदगी
0: लिए अंदाज आए
2: कितनी हंसी है जिंदगी
0: हाँ हाँ मिले रिकल मिल जाए भैया
1: गरम ना
0: एंड फॉर द रेस्ट ऑफ प्रीमा
1: या प्रीमा खाली गरम लगे बे जाले बहरे बैठे
0: तो तू स्वयं बात में कूद पर स्वयं बात ना बनाई ले अपने तो इंच में
1: स्वयं बात ना ना ना बना ली बिरतुआ कह रहा वो बंद कर दे
0: ले
1: ना ना स्वयं स्वयं कना स्वयं बात तो सब बंद है
0: ये कुत्ती ओके भैया एकदम
1: दूसरा है ना दूसरा है ना
0: ओ हाँ
1: हाँ तो
0: हाँ तो ठंडा पानी पोल लिया
1: या तो या संध्या सवेरे खूब गंगा ना वो गंगा
0: गंगा ना
1: गंगा ना
0: गंगा ना
1: वो ही नाम करो ना वैसे करो फाइन आफन और फाइन अच्छे
0: या थैंक यू वेल भैया विल फील लाइस टू प्लेसिर वैसे
1: या
0: एंड फाइन आफन बट अच्छे या एम लाइफ लाइस तेरा तो तो फॉलो तू भी
1: या ओके दा
0: ये थी बेया जी यूं तरह के रहने वाली फॉन हिंदुस्तानी राधे खुद नाफंत हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो
4: हाँ हेलो
0: मैं तू यहाँ पे तेरी एयर
3: एक और अन्य दो सब तू बात सामने लाएं
0: या दाग बेया
3: हाँ
0: अब एक तू इधर बेया है
3: या
0: हो इज्जत मत भैया
3: या ना हो हम अपना थक गली हो इज्जत एक अप मुफियादा
0: हां ओ नो फेलिसिटेर
3: ए
0: नो फेलिसिटेर भैया डबल फेलिसिटेशन
3: ओके हम लोग गए
0: नातिन भाईले की पोतिन कौन सी भाईले
3: प्लस
0: After Klein Zone. After Klein Zone, oh, Pota.
3: And Balakini Wala is 3 geworden.
0: Oké, gefeliciteerd.
3: Oh, hem lukt 4 keer bij Ayla Gharen.
0: Mooi, heel mooi. Gefeliciteerd.
3: Dus daarom ben ik zo moe, maar ik dacht, ik bel toch nog. Ik heb een paar minuten tijd, dus
0: ja,
3: laat me even toch bellen.
0: Dat doe je al die zappen gaan we betalen bij, ja?
3: Mijn Ganwa? Aye, Bahar ko ham baat len.
0: Regal. Aye, Bahar ko ham baat le. Regal. Bhaiya, tu ke ek chota wala hoy to thama de de.
3: Yeah, happy girl, happy girl.
0: Hoy mar.
3: Okay.
0: Hoy mar dere.
3: Kisi ne pucha dard kaisa hai. Kisi ne pucha dard kaisa hai. हमने हंस के जवाब दिया जो अपना ऐसा कहकर जो अपना होकर अपना ना हो
0: ओ मोई
3: तो सबसे सबसे बड़ा वही है कि जो अपना है जो अपना ना हो वही सबसे बड़ा दर्द है
0: दैट इज इंदरदात सो दैट इज पेन है
3: या
0: Ja.
3: En ik heb nog een kleine.
0: Heel kleine, Bia.
3: Ek tum jo pooch lete haal mera. Ek tum jo pooch lete haal mera. To ghar ke sari dawaiyan phek deti.
0: Arre wah, kya baat hai. Nee,
3: ja toch? Ja, je haal poets je koeike, dat hier aan de rest van hem ja.
0: Nee, inderdaad, zo koeike dek.
3: Dat is toch ook zo?
0: Ja, dat is zo koeike dek, lele, koeike dert, poetsje.
3: Precies, koeike baat kan lele.
0: Ja.
3: Dan is je hartstikke dilagi kan lele, haal chal poets lele.
0: Dat deel halka hoja bole.
3: Precies, ja. Precies. Hamad datra is nebhi bole.
0: Nee,
3: klopt. Hamad datra bole, je haat uit huis. Dan bole, tu behre chal jeeje, dan jat na tor pira rahi, to pirwe na toke lagi.
0: Nee, dat is inderdaad zo.
3: En dat ervaar ik ook. Dat ervaar ik ook. Ooit heb ik niet krillen daar was.
0: Precies, dat moet ook gebeuren.
3: Ja,
0: Bea, dankjewel.
3: Ja,
0: ik wens jou een fijne avond. En nogmaals, dubbele, trippele felicitaties. Van jouw verjaardag en van je achterkleinkind.
3: Ja.
0: Oké.
3: Is goed.
0: Dag Bea, tot
3: ja, dag, fijne avond, veel plezier.
0: Dag.
3: Ja, dag, dag, dankjewel.
0: ये थी बेया जी देना के रहने वाले तो लीजिए हम पहुंचते हैं उर्सिला के पास रोटरडम के रहने वाले उर्सिला जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए रोटरडम के रहने वाले उर्सिला जी के लिए इस तरह से

आदमी मुसाफिर है, आता जाता है। और लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश की फ़ौन इंसानी राजीव गीत बसर के कार्यक्रम में, रोतरदाम के रहने वाली इर्सीला जी के लिए। इर्सीला जी, गीत उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है इर्सीला, तो रोतरदाम। चलिए अगला गीत हम पेश करें, बेया उतरख के रहने वाले है बेया जी के लिए। चलिए ये शानदार गीत बेया जी, हियर कम दत्त उतरख बेया जी।

जीने के अगर अंदाज आए आपको सुनाया गया आशा जी की आवाज़ में ओवर अफगानिस्तानी रेडियो। और ये गीत हमने पेश की बेया जी के लिए, उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ शुभ रात्रि पेश करते हुए। चलिए आखिरी गीत बचा है और वो है बेया दनहा वाली। बेया जी, बेया गजराज जी दनहा के रहने वाली है। तो लीजिए बेया जी, बेया गजराज जी दनहा के रहने वाली, इस तरह से आ रहा है ये गीत बेया जी के लिए।

0: हर को हम बांट ले फाउनिस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत चला, इस तरह से हमने पेश की। और देखते हैं ये गीत चला दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया गजराज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भैया यूसुफ सभी को धन्यवाद दीजिए। भैया यूसुफ
1: Alfandrein, Mofrosila uit Ipenburg, de heer Mohamed uit Den Haag, de heer Jozef uit Ipenburg, mevrouw Mila uit Zoetermeer, mevrouw Ursula uit Rotterdam, mevrouw Bea uit Utrecht en mevrouw Bea Gedraaid uit Den Haag. Dat waren de bellen voor vanavond. Hartelijk dank.
0: Joost, dankjewel. Jij ook hartelijk bedankt en tot de volgende keer.
1: Ja.
0: सुनने वाले श्रोताओं और यूसुफ ने सभी को धन्यवाद दे दिए और मैं अपने तरफ से सभी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा क्योंकि भैया यूसुफ ने नाम ले चुका है। फौन स्थानीय रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ दिया, और जो लोग लाइन पर नहीं आ सके उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। अगले सप्ताह आप तार कर सकते हैं। यहाँ तक था यह कार्यक्रम। मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बाकी कार्यक्रम हमारे सहयोगी आपके आपको सुनाएंगे। अब मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंदरदाग। जी आने वाला दोंदरदाग तो से 12 यूर एंड 3 मिनट 12 बजे रात के ना 12 बजे दिन के तो से 12 एंड 3 यूर।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते ही, क्या आपको मालूम है, आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारो? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इस नहीं सोन ओ फिल्म से मार अति से हेल मोई नंबर लात वे वीडियो के खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

पालकी में होके सवार चली रही। फिल्म के नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्माश्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे ये प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निकटी हॉलिड एंड फिनेस अस्तका। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

फिर ये मुलाकात हो ना हो, नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम, वो कौन थी, और ये गीत जो है। दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना सके। परमात श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी का नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है, फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। निखतिनहोंदत एन फीनस अस्तखमेंजे, मैं निगाहें तेरी चेहरे से, परमा श्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एगो सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

का हैप्पी स्टेशन 500 रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है। और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होतों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

होठो में ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ, तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने निस्ताई रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

प्यार में, तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुने हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के से लेकर आना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकंड में मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 0 7 5 2 8 4 0 या 0 7 3 7 2 0 0 तारकंड नंबर है। शान दोस्तों, शान एक गायक है लेकिन शान को एक बैंड एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

उदित नारायण पद्मश्री, उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरा, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीखा ना अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबू बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौड और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं, एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर, वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह ये लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ भी किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि स्क्राइफर एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ, और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

तेरे बिना दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम की बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक

पाम स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वासी सबसे मौच कफाला, तो वो जवाब देने लगा। फिर लड़ाई हुई, लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चल गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फरदाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जो लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1996 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवास दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुन

नीले गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का सब है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत, विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए है, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिंग आतन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार, आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलकर सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात, आज पहली बार दिल के बात की है।

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और राजेश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख राजेश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कति पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

1969 के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बलराज सहनी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शास्त्र के बात है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा, उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया साउंड झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्में बनाया, बड़े बड़े फिल्में जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनहारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

किसका गुस्सा है भला, जिस पे आए प्यार किसका गुस्सा है भला, जिस पे आए प्यार ऐसा दुश्मन हाय रे, जिसको समझे यार सोचो तो वो

या आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों, मस्त बहारों का मैं आशिक, फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया, और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों, बीते हुए दिनों में एक बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब फिल्म फ्लॉप हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था, जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

या फिर का हैप्पी सेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइटी मुकेश के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गायत, इस फिल्म में देवानंद एक गायत था, हिट्स था, रेस हिट्स, और

शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं, वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

रातें कहीं बीते ना ये दिन, जैसे मैंने कहा दोस्तों बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ, तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया, उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता अच्छा नहीं लगता है, तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों, तो सलमान खान आज इतना बड़ा एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का नाम, अनुराधा एंड उदित नारायण।

राखिया लव सॉन्ग जा मेरी जा रही है सनम, एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 90s रोमांटिक सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

थे तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया द टाइगर ऑफ द इंडिया कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग।

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनी का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तरह से है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।